फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6 बजने को हैं। कुछ पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है

0: कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
4: निसंदेह आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा राष्ट्र भारत सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है। निश्चय ही यह अत्यंत हर्ष का विषय है, किंतु अब यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या केवल सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति ही राष्ट्र शक्ति का आधार है? क्या राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय नेतृत्व आदि महत्वपूर्ण आधारों का किसी भी प्रकार से औचित्य है? क्या बताया गया आधार

0: अस्तित्वहीन अथवा महत्वहीन हो चुके हैं? उत्तर है जी नहीं। इन आधारों का महत्व आज भी यथावत बना हुआ है। वास्तविकता तो यही है कि एक राष्ट्र सैनिक, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल और राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में वो कदापि शक्ति रूप में प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता है। राष्ट्र शक्ति रूपी भवन चरित्र, मनोबल और नेतृत्व रूपी आधार स्तंभों पर ही स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र ही उस राष्ट्र की शक्ति का वास्तविक दर्पण है। व्यक्ति गुण राष्ट्रीय चरित्र के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, विधि विधानों के प्रति निष्ठा और उसमें बलिदान तथा त्याग की भावना आदि। मार्गेंथों के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यतः सकारात्मक प्रभाव होता है। उच्च और स्वस्थ राष्ट्रीय मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। फ्रेंकल के शब्दों में ये वो सीमा है जहां तक लोग अपने नेताओं को समर्थन देते हैं, अपने राज्य की श्रेष्ठता और अपने उद्देश्यों की अवचित्य पूर्णता में विश्वास रखते हैं। पामक पार्किंस के शब्दों में मनोबल एक आत्मिक वस्तु है जो निष्ठा, भक्ति और साहस, विश्वास, व्यक्तित्व और सम्मान की रक्षा की प्रवृत्ति सम्मिश्रण है। ये व्यक्तित्व और सम्मान की रक्षा की लालसा है। नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य चाहे राजतंत्रात्मक हो या प्रजातंत्रात्मक, उसके संचालन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेताओं के गुण, महानता और कुशलता नेतृत्व पर राष्ट्र की शक्ति निर्भर करती है। मैकाइवर और पेज के शब्दों में नेतृत्व शक्ति की एक ऐसी योग्यता है जिसका संबंध पद से न होकर व्यक्तित्व से होता है। प्राचीन काल से ही राज्य शक्ति अर्थात राष्ट्र शक्ति राजनीतिक चिंतकों के चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, मैक्यावली और हिंगल जैसे महान राजनीतिक चिंतकों ने उपयुक्त के संबंध में अनुपम और अमूल्य विचार प्रतिपादित किए हैं। किंतु यह अत्यंत खेदजनक तथ्य है कि वर्तमान भारत में चरित्र, मनोबल, नेतृत्व आदि नैतिक गुणों का राष्ट्रीय स्तर तो दूर, व्यक्तिगत स्तर पर भी पतन दृष्टिगोचर हुआ है। आवश्यकता है पुनः भारत को वास्तविक राष्ट्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने हेतु विभिन्न आधारों के महत्व की पुनः स्थापना की। परिवार से राष्ट्र तक प्रत्येक स्तर पर भगीरथ प्रयास करने होंगे। इन पुनीत कार्यों में शासन और प्रशासन के दायित्वों और कर्तव्यों की अपेक्षा है। राष्ट्र में विद्यमान साधनों और नागरिकों का सदुपयोग तभी संभव है जब शासन और प्रशासन स्वयं सुनियोजित रूप से संगठित, सक्षम और प्रभावशाली हो तथा नागरिकों और साधनों का समुचित समन्वय करते हो। इन तत्वों का समुचित समन्वय करके राष्ट्र शक्ति रूपी उद्देश्य प्राप्त करना प्रत्येक शासन प्रशासन का दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। वीवी डाइक के शब्दों में राष्ट्र में शासन और प्रशासन का सुसंगठित और प्रभावशाली होना ही राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। सुसंगठित और प्रभावशाली शासन और प्रशासन का अभाव राष्ट्र शक्ति रूपी लक्ष्य प्राप्ति को असंभाव्य बना देता है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कौशिकी चक्रवर्ती और विजय गोपालकर। आरंभ में संत ब्रह्मानंद की ये रचना सुनिए, आशीष मजुमदार के संगीत पर। कलाकार हैं कौशिकी चक्रवर्ती।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: कौशिकी चक्रवर्ती के स्वर में ये पारंपरिक भजन अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आशीष मजूमदार के संगीत पर ये रचनाएं आप सुन रहे हैं। और अब आप सुनेंगे विजय गोपालकर के स्वर में संत कबीर की रचना इन संदेशों के बाद।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: विजय को पारकर के गाए कबीर लिखित इस भजन के साथ ही अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि मंच। वार्ता का विषय है वर्षा काल में किसानों का खान पान।
1: राम राम, जय जोहार। मैं डॉक्टर मनीषा चौधरी। जैसे कि आप मनजाना था, मानसून ने दस्तक दे दी है, रिमझिम फुहार के साथ गर्मी ले राहत मिल गई से, पर गर्मी भी है, उमस भी है, एमे संक्रमण के खतरा बढ़ जाते। ओकर बर बारिश में खान पान में विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी रहते। बरसात में नमी व उमस भरे वातावरण में कई तरह के वायरस बैक्टीरिया ल जन्म देते, जो हमारे खाए पिए के चीज में मिलकर ओला विषाक्त कर देते। इस समय में दस्त, अपच, खांसी, जुकाम, टाइफाइड जैसे बीमारी के संभावना बढ़ जाते। ओकरे से थी इस समय में खान पान में विशेष सावधानी के जरूरत रहते। ये समय में कुछ बात ला ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ये मौसम में तेल मसाला और बाहर के खाना

0: जोन होते तेकर से परहेज रखना चाहिए। खट्टी चीजें जैसे इमली अचार आदि ला नहीं खाना चाहिए। एहर का करते कि शरीर में पानी की कमी कर देते। करेला नीम तुलसी मेथी हल्दी जैसे चीज के उपयोग करना चाहिए। एमन का करते कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते। हमन शहद के भी उपयोग रोजाना कर सकत हन। एहर हमार पाचन तंत्र ला ठीक रखते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते। और जो हमन पानी पीथन तेला अच्छा से उबाल के पीना चाहिए, विशेषकर बरसात के मौसम में। ये मौसम में कच्चा भोजन जैसे सलाद खाए के थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे चीज जोन में रहते जैसे खीरा ये सब ला खाए ले अपच पेट के जो संक्रमण होते ते में फायदा होते। मतलब खीरा खा सकत है ना, वो जो कच्चा सलाद खाए के सलाह हमने समय में कम देथन। फल और सब्जियों को गर्म पानी में बढ़िया से धो के उपयोग करना चाहिए। मौसम ठंडा हो के बावजूद ये मौसम में हमला अच्छा से पानी पीना चाहिए, काबर के समय में डिहाइड्रेशन डायरिया जैसे बीमारी हो के संभावना रथे। ये मौसम में तरबूज खरबूज जैसे जो फल हर रथे ना तेमला खाए से बचना चाहिए। जली फल मन त नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया हो के संभावना ज्यादा रथे। गैर मौसमी फल जे मौसम के फल नहीं रहे वो मौसम के फल से खाएला बचना चाहिए। मतलब गैर मौसमी फल ला नहीं खाना चाहिए। ये मौसम में आसानी से मिलने वाला जैसे भुट्टा रहते, इमें फाइबर अच्छा मात्रा में रहते, तो भुट्टा खा सकत हन जो शरीर ला गर्मी भी प्रदान करते और रोग प्रतिरोधक क्षमता ला भी बढ़ाते। ये मौसम में हमन स्वास्थ्य ला ध्यान में रख के गरम गरम खाए पिए के सलाह देता है। जैसे हर्बल टी हो गए, ग्रीन चाय कॉफ़ी वेजिटेबल सूप जो रहते सब्जी के सूप जैसे गरम गरम चीज ला पिए ले तुरंत ऊर्जा मिलती। और इस समय में अगर जूस पीना है तो घर में बना के जूस ला पीना चाहिए और तुरंत पीना चाहिए। और गरम गरम दूध भी ये मौसम में पिया जा सका थे। तो कुल मिला के ये मौसम में बाहर के खाए भोजन ला खाए से बचना चाहिए और घर के बने चीज के सेवन करना चाहिए, जेकर से ये मौसम में संक्रमण कम हो और हमार स्वास्थ्य बने रहे। तो ये छोटी छोटी बात ला ध्यान में रख कर हमन बरसात के मौसम के मजा ले सकत हन, सुंदर फुहारा के मौसम के मजा ले सकत हन और स्वस्थ रह सकत हन।
1: वर्षा काल में किसानों का खान पान विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। कार्यक्रम कृषि मंच अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस गान भाग 102 का प्रसारण आप सुनेंगे। देश गान हम आपको सुनवाएंगे 6:50 पर। 7:05 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फूल और कांटे फिल्म के गीत। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा प्रसारित होता है 7:35 पर। 7:45 पर आप आनंद ले सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम बाजे मादन का। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी हम आपको सुनवाएंगे

0: 8:30 पर, 9 बजे से 9:55 पर तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच पर्सन बिहाइंड द स्टोरी ये पॉडकास्ट आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। लोक संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गजलों का कार्यक्रम शामी गजल हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर द्वार सुनेंगी। कार्यक्रम में आपस के गोठ का विषय है महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़ें, सतर्क रहें, मिलकर डेंगू को हराएं, ये है चर्चा का विषय। साथ ही आप जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में और स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुनेंगे सुरक्षित आहार आपके स्वास्थ्य का आधार, इस विषय पर चर्चा। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:30 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:15 पर गैर फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे। 9 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ और रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकेंगे संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: FM 107.7 MHz पर ही आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 102, स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का है और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है,

रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान भाग 102। आकाशवाणी की प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरितमानस गान अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम देशगान, समूह स्वर में देशभक्ति गीत सुनिए।

समूह स्वर में देशभक्ति गीत का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम देशगान अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: यत् गृहमन्त्री अमितशाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यताभंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 6.1 मीटर भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्तिभावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौकायात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यूनचाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य

0: विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं, जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
1: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और कार्यक्रम में आज की फिल्म है फूल और कांटे। ये फिल्म नवंबर 1991 में रिलीज हुई। दोस्तों, ये सोनू फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म थी और ये एक्शन फिल्म थी, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में आप अजय देवगन, मधु, अमरीश पुरी, आरिफ खान, रजा मुराद और सत्येंद्र कपूर जैसे कलाकारों को आपने देखा। फिल्म का निर्देशन कुकू कोहली का था, इसे लिखा इकबाल दुरानी ने। और इस फिल्म मुख्य यादों में अगर हम आपको बताएं तो आपको याद ही होगा फिल्म में अजय देवगन की एंट्री बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, जिसमें वे दो जलती मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर संतुलन बनाते हुए दिखाई दिए। फिल्म के गीत आप सुनेंगे, कलाकारों में हैं गीतकार समीर और रानी मलिक, संगीत आप सुनेंगे नदीम श्रवण का, आवाजें अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजें हैं, साथ ही आवाजें अलीसा चिनॉय की। तो फिल्म का ये पहला गीत फूल और कांटे फिल्म का अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वर में सुनिए। हमने आपको बताया गीतकार समीर रानी पलिक और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है फूल और कांटे। ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आवाजें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम शर्मा। कार्यक्रम का अगला गीत समीर का ही लिखा हुआ, नदीम शर्मा के संगीत पर कुमार सानू की आवाज़ में सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए।

0: है, संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

ये आवाज़ ये थी अनुराधा पडवाल और कुमार सानू की। इनकी आवाज़ में रानी मलिक का लिखा एक गीत अभी आपने सुना नदीम श्रवण के संगीत पर, और फिल्म का नाम फूल और कांटे। फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम एक ही फिल्म से समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम झरोखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौसम हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान के लिए बारिश कब होगी, तापमान कितना रहेगा और आंधी तूफान की संभावना है या नहीं, इन जानकारियों का समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है। आज मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मौसम से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हाथों में उपलब्ध है। भारत सरकार के मौसम एवं कृषि से जुड़े प्रयासों के तहत मेघदूत और दामिनी जैसे उपयोगी मोबाइल ऐप लोगों को मौसम संबंधी जानकारी और चेतावनी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। आज हम इन्हीं दो ऐप की बात करेंगे, तो जानते हैं इन ऐप का उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेघदूत ऐप की। मेघदूत मुख्य रूप से किसानों के लिए उपयोगी मौसम और कृषि सलाह उपलब्ध कराने वाला ऐप है। मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को फसल की देखभाल, सिंचाई, बुआई, कीट नियंत्रण और कृषि कार्यों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, मान लीजिए किसी किसान को खेत में सिंचाई करनी है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति

में किसान उपलब्ध मौसम सलाह को देखकर अपने कृषि कार्य की योजना बना सकता है। इसी तरह बारिश, तापमान, आर्द्रता और अन्य मौसम संबंधी जानकारी खेती से जुड़े निर्णयों में उपयोगी हो सकती हैं। मेघदूत की एक खास बात यह है कि इसमें मौसम की जानकारी को कृषि सलाह से जोड़ने का प्रयास किया गया है, यानी केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि मौसम के अनुसार फसल के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दामिनी ऐप की। आकाश में बादल देखकर हमें पता नहीं चलता कि आने वाले कुछ समय में बिजली गिरने की संभावना है या नहीं। ऐसे में दामिनी ऐप उपयोगी हो सकता है। यह ऐप बिजली गिरने यानी लाइटनिंग से संबंधित चेतावनी और स्थान आधारित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। यदि आपके क्षेत्र में आकाशीय बिजली की संभावना हो तो चेतावनी मिलने पर खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे या जल स्रोत के पास खड़े रहने से बचना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षित भवन या सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, विशेष रूप से किसानों, खेत में काम करने वाले मजदूरों, चरवाहों और खुले स्थान में रहने वाले लोगों के लिए ऐसी चेतावनियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक बात हमेशा याद रखें, मोबाइल ऐप हमारे सुरक्षा में मदद करने वाला साधन है, सुरक्षा की गारंटी नहीं। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए ऐप पर मिली जानकारी के साथ स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनी पर भी ध्यान देना चाहिए। इन ऐप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में संबंधित ऐप इंस्टॉल करें, ऐप को आवश्यक अनुमति दें और अपने क्षेत्र या स्थान से संबंधित मौसम की जानकारी देखें। समय समय पर ऐप को अपडेट करते रहें ताकि आपको उपलब्ध नवीनतम जानकारी मिलती रहे। किसानों के लिए यह आदत विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। कृषि कार्य शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी देखें, आंधी बारिश या बिजली की चेतावनी को गंभीरता से लें और मौसम के अनुसार अपने काम की योजना बनाएं। श्रोताओं, डिजिटल तकनीक का सही उपयोग हमें मौसम की अनिश्चितता से निपटने में काफ़ी मदद कर सकता है। मेघदूत हमें मौसम आधारित कृषि सलाह समझने में मदद करता है, जबकि दामिनी आकाशीय बिजली से जुड़ी चेतावनियों के प्रति हमें सतर्क कर सकता है। तो आज एक छोटी सी आदत अपनाइए, घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी देखिए और खेत में काम करने से पहले मौसम की चेतावनी ज़रूर जांचिए। सावधानी ही सुरक्षा है और सही समय पर मिली मौसम की जानकारी हमारी मेहनत, फसल और जीवन तीनों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस संदेश के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मातर। कार्यक्रम के आरंभ में लता खापर्टे और साथियों का गाया ये लोकगीत सुनिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

कुलेश्वर ताम्रकार और साथियों के गाइस, लोकगीत के साथ ही अब लोक संगीत का कार्यक्रम भाजे मांदर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। 7:55 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सूचना सुनिए। कार्यालय थाना प्रभारी खरसिया जिला रायगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात पुरुष के संबंध में जांच की जा रही है। दिनांक 5 जून 2025 को ग्राम बड़े डूंगरपाली के पास अंबेडकर नगर नहर के पास लगभग 65 से 70 वर्ष आयु के एक अज्ञात पुरुष का शव पाया गया था। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मृतक का हुलिया लंबाई 5 फीट, रंग सांवला, सिर पर सफ़ेद बाल, दाढ़ी में लंबे सफ़ेद बाल और शरीर पर भगवा रंग की टी शर्ट पहने हुए था। जानकारी के अनुसार वह आसपास के गांवों में भीख मांगकर जीवन यापन करता था। यदि कोई व्यक्ति इस हुलिये के आधार पर मृतक को पहचानता हो अथवा उसके परिवार, रिश्तेदार या वारिसान के संबंध में कोई जानकारी रखता हो तो कृपया थाना खरसिया जिला रायगढ़ को तत्काल सूचना दें। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रम की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 8 बजे समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। समाचारों के बाद हम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 8:30 पर। 9 बजे से 10 बजे 9:55 तक प्रदेश विविध

0: क्षेत्रीय आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे पॉडकास्ट पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से होगा। लोक संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 10:10 पर। 10:30 का समय होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। 11:00 से शाम 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गजलों का कार्यक्रम शामी गजल आप सुन सकेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर द्वार सुनेंगी। कार्यक्रम में आपस के गुट का विषय महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़े, सतर्क रहें, मिलकर डेंगू को हराएं, यह है विषय चर्चा का। साथ ही आप जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8:00 को है। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21

0: सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना

0: है, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
3: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M. Pallurutti की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों में प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद

0: रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास, डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया, कहा बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD प्रिडिक्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration.

0: जय जोहार संगवारी हो, आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवे आप मन के मन पसंद कार्यक्रम हेलो संगवारी। मैं हूँ आपन के रेडियो संगवारी नीलू प्रधान। संगवारी हो, गीत संगीत हमर जिंदगी के एक ऐसन साथी है जोन हर की सुख दुख के बेरा मा हमर संग रही थे। गीत संगीत सुन के हमर चेहरा मा मुस्कान आ जाते, तो कोनो गीत सुन के पुरानी मीठी याद मा ले जाते संगी हो। तो संगवारी हो, आज फिर हो ही आप मन के संग मीट मीट बातचीत, मन पसंद गीत के फरमाइश और हो ही गीत के सुहाना सफर। तो चलो बिना देर करे उठाथन आज के पहली फोन ला। हेलो
1: हेलो
0: हेलो संगवारी, कार्यक्रम में स्वागत हवे संगी।
1: हेलो संगवारी।
0: हेलो, और बतावा का हाल चाल है संगवारी आपन के?
1: सब बढ़िया है मैडम।
0: अच्छा, बहुत खूब। आपन के नाम बताइए, आपन के गांव के नाम बताइए संगवारी।
1: हाँ, मैं मोहला कुर्सीपाल विष्णु राम यादव बोला था मैडम।
0: ओ बतावा संगी, आज आप मल्ला का गीत सुनवा वो?
1: बेहतर राम साहू के एक तो भजन सुना दे मैडम, बढ़िया वाला।
0: गीत के बोल बोला।
1: भजन करो भैया गाये नरतन के, भजन करो भैया गाये नरतन के, ये वाले भजन सुना दे।
0: बहुत बढ़िया गीत के फरमाइश करे है संगी।
1: जी जी जी,
0: फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के ये गीत ला सुनावा थन चला।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो संगी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है वे संगी।
1: धन्यवाद दीदी।
0: कौन बोला था, कहा ले बोला था संगवारी?
1: राम कुशल पटेल बोला था दीदी, हैदराबाद तेलंगाना ले। दीदी
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। आओ, का हाल चाल है आप मन के संगी?
1: सब बढ़िया, दीदी आप मन बताओ सब बढ़िया है ना?
0: हाँ
1: पानी रायगढ़ के सभी उद्घोष।
0: हाँ सब बढ़िया है वे संगी। आओ, आप मन करा बारिश वारिश होते कि नहीं होते?
1: अभी 4-5 दिन हो गए बारिश वरिश नहीं होती। हाँ
0: अच्छा,
1: हाँ
0: और आ
1: मिस्त्री
0: हाँ, और आप मन का बुता काम करता?
1: काम करता दीदी।
0: अच्छा, काका लगाया है।
1: ये हरेली तिहार 15 अगस्त के सब आदर आधा सुवारी के टीम बहुत बहुत दीदी।
0: आज का गीत सुनना चाहिए संगवारी आप?
1: छत्तीसगढ़ के तिहार
0: बहुत बढ़िया संगवारी, बहुत बढ़िया गीत के फरमाइश करे हवा। लेवा आप मन के गीत ला सुनवावत हन।
1: धन्यवाद।
0: फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद है।

0: राम राम, जय जोहार।
1: जय
0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो संगवारी, कार्यक्रम में अपन के बहुत बहुत स्वागत है वे संगवारी।
1: जय राम। रोशन
0: जय राम। बताओ संगी, अपन के का नाम आए?
1: देवान बोला था, बिलाई गल ले। जी
0: रोशन देवांगन जी।
1: जी तो
0: आओ बतावा, अभी के बखत बेरा में अपन का पुता काम करा था?
1: हाँ, अपन साड़ी बुनाई काम है, साड़ी बुना बुना का अपन निकाय का मतलब सुना था।
0: अच्छा, बहुत सुगर।
1: हाँ,
0: तो अपन बुता काम के संगे संग आज का गीत सुनना पसंद करिया अपन?
1: अब काल हरेली तिहार मनाबो, छत्तीसगढ़ के पहली तिहार, तो मो छत्तीसगढ़ के तिहार बड़ा निक लागे वाला गीत सुना दिया।
0: ठीक है भैया, बहुत सुघर गीत के फरमाइश करे है वह अपन।
1: हाँ,
0: फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार, जय जोहार।

0: खुश आओ छोटकू।
1: अच्छा आओ संगवारी बताओ का हाल चाल है।
0: सब बड़े बड़े संगवारी रे, हरी तिहार की तैयारी चलत है। और किसानी का हम बियासी वासी चलत है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: आओ
0: हाँ।
1: तो आपन का खेती बाड़ी करे हा?
0: धान भर गए गन्ना।
1: धान और गन्ना का?
0: हाँ
1: गन्ना ला कितने एकड़ में लगाया है संगवारी?
0: गन्ना ला अगन कुछ लगा था।
1: तो अभी के बेरा में आपन आज का गीत सुनना पसंद करिया आप मन?
0: चतुराम साहू के सुना देता।
1: गीत के बोल कहा वे संगवारी?
0: कोई भी गीत सुना था चतुराम साहू के।
1: अच्छा ठीक है भैया, लेवा आप ला सुनावा था आपन के मनपसंद के ये सुघर गीत ला। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संगवारी
1: जी, हरिया दुख रहा जो हम अमली सर पी करके छाओगे महाराज जैसे बाबा चौक ग्राम से डेवरी प्रारी जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में रिथन हम संगवारी रायगढ़ के जम्मू संगवारी ला राम राम और जय जोहार है। हमन बोलथन ग्राम सिद्धूरी से रवि शंकर चंद्राकर दीवान
0: जी। संगवारी अभी के बखत बेरा में अपन का बुता काम चलत है?
1: अभी खेती बाड़ी के बूता चलत है, निंदई और चलई बूता माते है दीदी। जी
0: तो आज का गीत सुनना पसंद करिया अपन?
1: भारत माता ने बंदा मैं पदी में पैया लागल रे सुना आजादी के बंदा बलिदान नरे सुना आजादी के बंदा बलिदान। ये गीत सुनना है दीदी जी।
0: वाह बहुत सुंदर फरमाइश करे है वसंगवारी
1: जी। काबर दे आजादी के तरह बवैया है
0: उसकी
1: आजादी मिले है तो बना के रखना हम समस्त श्रोता संगवारी के दायित्व है और भारत के हर नागरिक के कर्तव्य है थे कि हमारे देश के आन बान शान ला बनाए रखना हमारे भारत के नागरिक बनना जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल संगवारी चलो सुनवात हन आप मन के मन पसंद के गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी कार्यक्रम में आपन के बहुत बहुत स्वागत है बे संगवारी।
1: हाँ, हम योगेश जांगड़े बोला हम सिरवा बांधा बने तारा ले जी।
0: योगेश जांगड़े कहाँ ले?
1: सिरवा बांधा बने तारा
0: बताओ, अभी जो है बरसात के महीना चलत है कहा?
1: हाँ
0: तो बरसात के महीना में जो है पेड़ पौधा बढ़िया उगते हैं, तो आपन अपन खेत में पेड़ पौधा लगा था कि नहीं लगा था?
1: लगाता रे घर
0: लगा था। का का पेड़ पौधा लगा था संगवारी?
1: वो कदम के पेड़ है, नीम वगैरह है, और एक आध दो ठो अपन फल वाले पौधे हैं जैसे अमरूद हो गए। हाँ
0: हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया संगवारी।
1: हाँ
0: तो आज आप मल्ला का गीत सुनवाओ संगवारी, केदार
1: केदार यादव जी स्वर में बढ़िया से लोग गीत सुनवा दे, स्वर
0: यादव के कोई
1: में बढ़िया से गीत सुनवा दे कोई सा भी।
0: सभी गीत। अच्छा
1: हाँ
0: ठीक है संगवारी, सुनवा था आप मल्ला केदार यादव के सुघर अकन लोकगीत ला।
1: धन्यवाद।
0: फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कल कितना मैं तै खोजतस पुजादर
1: भूले बिसरे को दिन तो मोर अंगना में बरस रे बादल
0: भूले बिसरे को दिन तो मोर अंगना में।

0: दिन।
1: तो संगी हो, यही गीत के संगे संग आज के कार्यक्रम यही सिरावत है। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस भूपत सिंह ध्रुवे के और प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही रवि आनंद। और संगी हो, आज के कार्यक्रम में संचालन करत रहे मैं यानी कि नीलू प्रधान। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम ले देवो विदा। राम राम, जय जोहार।
2: छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो संगवारी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर 9 बजने को है। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बचना ए हसीनो, इस फिल्म से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे ये गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से। वैसे इस फिल्म के कई गाने, खास तौर से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड रेट्रो से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इस फिल्म के कुछ गानों में आपको राहुल देव बर्मन के गानों की झलकी सुनाई देगी। खैर, इस गाने को के म्यूजिक को तैयार किया था विशाल शेखर ने और इस गाने को लिखा है अन्विता दत्त ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाख

0: का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 9:10 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
3: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या?
1: अच्छा।
3: टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
4: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी।

0: के साथ ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है. और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी. और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ. प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है इसकी प्रेपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है. तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस. तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड. तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
1: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
3: देखिए अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी. हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफी हद तक हमारे काम आई क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए. फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई. और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं. तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई.
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आप को फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपीडिशन में?
0: बींग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मेंटली स्ट्रांग होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है. तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई. थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि एंड्योरेंस और स्टेमिना की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके. तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई. अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी. बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम.
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
2: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था. बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में. एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं. क्या हम

0: पाएंगे या नहीं, बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू. इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप.
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में. विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है. फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है. हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी. और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है. और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है. तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है. एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था. धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा.
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
2: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था. और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था. तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा. तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा. प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
2: दिन महीने बन गए.
1: ये है मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
3: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड. एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
0: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
1: तो दिस वाज द बेस्ट

0: पार्ट की सबको सब कुछ मालूम था ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए।
1: यस,
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
2: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया। वो अनप्लान्ड था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में। फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे आके खत्म हुआ।
0: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा। तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख-दुखी चल रही थी?
2: अभी भी जैसे हम आए हैं कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है, हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था। तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी। और हुक्स हमने जब ग्लव से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नम हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
0: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
3: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ, ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय

0: पिला देता है. ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है. अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या. तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है. तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था.
1: तो मेजर प्राजक्ता आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी.
2: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था. तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते. उस
3: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है. जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी. तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए.
2: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग. सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे. आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है. आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर. एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था. हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे.
1: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
0: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है. जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है. हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कम्फर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट. बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल. इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी.
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो,
3: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने मैं काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है. इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी. पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था. और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया. ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं. तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है.
1: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
2: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना. एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए. बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है. तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी. तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ

0: तो आपने विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
1: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. What happens on the boat stays on the boat.
0: तो स्ट्रॉन्ग लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है. टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं. मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, चार देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे. अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन चार कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया. जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सबकी आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है. और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है. तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया. तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे. तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे.
0: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा. और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं है
1: उसके कभी नहीं.
0: निसंदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में. लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा?
3: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वाज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज्ड टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं. तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे. अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में. एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे.
0: तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मतलब सभी के लिए. जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो उस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
1: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था. तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था. लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी. वो मुझे याद है वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके. वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था. और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा.
0: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
3: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे. And this was when we were coming to Mumbai from Cape Town. And morning, I think 5:30, 6 o'clock की बात है. हमें horizon पे sunrise होता हुआ दिख रहा है. And all of a sudden, मेको आवाज आती है. बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में. और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस time पे. तो दूर हमने देखा almost thousands of dolphins. एक line से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछल

0: उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले. They are probably migrating क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है.
1: Such a beautiful
2: experience.
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए.
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स. किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस. सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस.
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
0: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था and जब मैंने ये expedition start किया था तो मैंने वो letter लेके गई थी and that is what kept me going through this entire
1: yes. मतलब अच्छा था आप लोगों का expedition, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.
5: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर. 9:40 हुए हैं. अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से.
6: चंद्रमुखी की भूमिका. इतने कपड़े लगते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे.
7: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ.

0: पैसे की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
0: नहीं, अभी इसकी जरूरत है।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
0: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वह जयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमती अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धनु, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलत ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाहरी महारानी, बाह फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है फटे रे, एक को समझाए दियो
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

विविध भारती के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 9:55 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

0: आंगनवाड़ी केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बस्तर तिरंगा यात्रा आज सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और रायपुर में आयोजित आजादी की धुन समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे। बस्तर संभाग में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा कल पहले दिन नारायणपुर से शुरू होकर मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। इस 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप कर रहे हैं। आज दूसरे दिन यह यात्रा दंतेवाड़ा से सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। वहीं कल तीसरे और अंतिम दिन बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंचेगी, जहां तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन होगा। इससे पहले कल शाम बारसूर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से भर गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके सम्मान में पौधारोपण किया और शहीद परिवारों से मुलाकात की। रायपुर में कल संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित आजादी की धुन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का माहौल बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का सुनहरा अवसर है। नया रायपुर के थनौद में स्थित 211 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजीव में तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी। कमांडेंट विनोद कुमार टंडन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान वर्ष में 7,470 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सांसद विजय बघेल के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों के विकास का काम जारी है, जिनमें से 10 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हो चुका है। दल्ली राजहरा रावघाट नई रेल लाइन परियोजना भी पूरी हो गई है, जबकि रावघाट जगदलपुर रेल लाइन पर निर्माण कार्य जारी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी त्रैमासिक कार्य प्रगति रिपोर्ट श्री शाह को सौंपी और मंत्रालय तथा संसदीय क्षेत्र के कार्यों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील और सतत खनन की संभावनाओं पर आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। यह सम्मेलन कल से नया रायपुर में शुरू हुआ है।

0: भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित 5वें ग्रीन स्टील और माइनिंग सम्मेलन में भारत के साथ फिनलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन से 400 से अधिक प्रतिनिधि और 40 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आगामी 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बस्तर तिरंगा यात्रा आज सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और रायपुर में आयोजित आजादी की धुन समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 10 बजे हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले ये सूचना सुनिए। थाना प्रभारी खरसिया जिला रायगढ़ द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम कर पंचनामा एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही के बाद शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया था। मृतक की पहचान गोविंद राम चौहान, उम्र लगभग 60 वर्ष, ग्राम कुनकुनी खरसिया के रूप में बताई गई है। पुलिस द्वारा ग्राम कुनकुनी तथा आसपास के गांव में वारिसान की तलाश की गई, लेकिन अभी तक मृतक के परिजनों या वारिसों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। मृतक का हुलिया खद लगभग 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, सिर पर बाल नहीं, पतला दुबला शरीर, भगवा रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पायजामा पहने हुए था। यदि किसी को मृतक के परिजनों या वारिसों के संबंध में कोई जानकारी हो तो कृपया थाना खरसिया जिला रायगढ़ को तत्काल सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। अब जानिए हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 10:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम आपके फरमाइश में आपके पसंद के फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे 10:30 पर। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से 2 बजे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ आकाशवाणी रायपुर से ही अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गजलों का कार्यक्रम शामी गजल आप सुनते हैं शाम 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर द्वार सुनेंगे। कार्यक्रम में आज के गोठ के अंतर्गत आप सुनेंगे महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़ें, सतर्क रहें, मिलकर डेंगू को हराएं। सुनेंगे आप ये चर्चा और जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से। संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा रात्रि 8 बजे। 8:15 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। 9 से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।

0: रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: देश की सुरीली धड़कन
1: विविध भारती
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
0: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
0: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली।
6: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सीमा कौशिक और साथी

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और ये जो गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी सीमा कौशिक और साथियों की।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार थे सीमा कौशिक और साथी। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम लोक संगीत समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों नमस्कार, फरमाइशों और खुशियों के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम फिर उपस्थित हैं आपको सुनवाने के लिए आपके पसंद के फिल्मी गीत और पढ़ने के लिए आप सभी फरमाइशकर्ताओं के नाम। तो आगे आप सुनेंगे अपने पसंद के फिल्मी गीत और आप सभी फरमाइशकर्ताओं के नाम। तो ये क्रम शुरू करें और आपकी ही फरमाइश पर आपको सुनवाया जाए शहीद फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन और पसंद करता हमारे श्रोता रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से लंबोदर प्रसाद, फैलेंद्र कुमार, तरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, हेमंत कुमार, राम ख्याल, तुलाराम, आर्यन, आयन, रूप बसंत, हरिशंकर, देवा पटेल, सीताराम निषाद, लक्ष्मण और लखीराम, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से। ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पीपर पारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन, संबलपुर कांकेर से ईमेल भेजा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने, चांदनी चौक गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा दतरंगी से हमें ईमेल भेजते हैं। इन सभी की फरमाइश पर सुनिए शहीद फिल्म का ये गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान। ये कहानी है एक फुट।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ से। और अब अगली फरमाइश मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस दो गाने के लिए। मजरू का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम धरती कही पुकार की। फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं भाटापारा दोतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक। दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू। ईमेल भेज रहे हैं ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। कोका भिलई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। कोल सिटी बरकाकाना से ईमेल आया है अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी साहिनी का, साथ में है मोहम्मद अफजल मलिक। माँ महिमा चौक मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टीकलाल पटेल। इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये दो गाना।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई।

श्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू और मोहम्मद फारूक लल्लन मिश्रा का, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञानभूषण शर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश शाहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें अपना फरमाइशी पत्र इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़ और पिन कोड 496001।
0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार

0: लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंत में अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के स्वर में ये दो गाना। संगीत फिल्म से संतोष आनंद का लिखा हुआ आनंद मिलिंद के संगीत पर। पसंद करता हमारे श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव विठल, विठल राव खर्चे, नारायण ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोर्णा खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, कौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा ईशु और अंशु गुप्ता, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी से हवा पर्वतांचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम और राजा, इन सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए ये गीत।

संगीत फिल्म के इस युगल गीत के साथ ही अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर। 11 बजने को हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा, इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था, जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजली का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ।
2: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
3: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
3: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

ये इस गीत में जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने से लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्मश्री से सम्मानित रायगढ़ घराने के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बस्तर की लुप्त होती पारंपरिक लोक धुनों को सहेजने वाले बस्तर बैंड के अनूप रंजन पांडे को वर्ष 2025 के लिए लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। बस्तर संभाग में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा कल पहले दिन नारायणपुर से शुरू होकर मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। इस 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप कर रहे हैं। आज दूसरे दिन यह यात्रा दंतेवाड़ा से सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। वहीं कल तीसरे और अंतिम दिन बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नम्बी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंचेगी, जहां तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन होगा। इससे पहले कल शाम बारसूर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से भर गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके सम्मान में पौधारोपण किया और शहीद परिवारों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने सहायक ग्रंथपाल प्रारंभिक परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक ग्रंथपाल के कुल 7 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 115 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया गया है। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के चैतमा के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार 2 व्यक्ति रायपुर से इलाज कराकर मनेन्द्रगढ़ लौट रहे थे। इसी दौरान चैतमा के पास मोटरसाइकिल और कार के बीच टक्कर हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आगामी 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आदि कर्मचारी अभियान के तहत आज से 15 अगस्त तक आदिवासी सेवा केंद्रों में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। सुकमा जिले में आज आयुष्मान महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। और रायपुर जिले में आज जिला स्तरीय एक्सपोर्ट अवेयरनेस कैंप और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बस्तर तिरंगा यात्रा आज सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन

0: संक्रमण अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांते 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं के फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक,

0: और एक प्राध्यापक।
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैया राजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00।
2: जय घोष वंदे मातरम।
1: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।
3: मैं

0: लता मंगेशकर की आवाज में नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा,

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी हमसे जुड़ते हैं फेसबुक पेज के जरिए, और अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमें आपको मिल जाएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का फेसबुक पेज, और वहां आपको हर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हर दिन हम एक इबारत आपके सामने रखते हैं और उनमें ही शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में, और आज की इबारत है सरगम मन की धुन में बसने लगी है। फिर से, सरगम मन की धुन में बसने लगी है, गाता है मन मेरा तो बजती है सितार कहीं, डोलती है डालियां, सरसराती हवा छेड़ती है रागनी, गरजते हैं बादल जैसे दे रही हो ताल तबले पर, सुनकर उसे उतरती हैं अप्सरा सी बूंदें धरा पर, घुंघरुओं से थिरकती नाचती हैं हो मगन, झूमकर गाने लगती हैं नन्ही चिड़िया कहीं कोमल स्वरों में, सुना है कभी इनका गीत, मन में बसने लगा है प्रकृति का जीवन संगीत। तो इससे आपने अंदाजा लगाया है कि प्रकृति के जादू या प्रकृति की जो अलग अलग तरह से संगीत किस तरह से होता है, किस तरह से हम महसूस करते हैं, उसके विषय में आज हम बातें करने वाले हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रकृति के बीच आप कैसा महसूस करते हैं, या आपने कोई ऐसी प्राकृतिक यात्रा की हो जो आपका मन के भाव कुछ अलग रहे हों, मान लीजिए नकारात्मकता रही हो या कुछ उदासी रही हो, और ऐसे समय में जब आपने प्रकृति की यात्रा की हो और प्रकृति का प्रभाव आपके मन पर पड़ा हो, तो उन किस्सों को आप हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी जलाशय जो होते हैं प्राकृतिक जलाशय, नदी तालाब झरने, ऐसे प्राकृतिक जल के संसाधनों का उपयोग आपने कभी किया है, वहां का पानी पिया हो, या वहां पैर ही बस थोड़ी देर डुबाकर अगर हम बैठ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कभी अगर हम वहां जाकर उस ठंडे ठंडे पानी में नहाते भी हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो भी हमें बताइए। हमारे एक साथी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं एक अद्भुत संगीतकार है, जब मन की सरगम जागती है तो हवाओं की सरसराहट रागिनी बन जाती है, डालियां लय में झूमने लगती हैं और बादलों की गर्जना में मानो तबले की थाप सुनाई देती है, फिर बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह धरती पर उतरकर नृत्य करने लगती है, नन्ही चिड़िया की मधुर चहचहाट इस संगीत में अपनी कोमल तान जोड़ देती है। सच है, प्रकृति के सानिध्य में बिताया हर पल मन को शांति से भर देता है। तो आप इस शांति का उल्लेख हमसे कीजिए और हम तब तक आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके स्मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है। शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृतिक के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे गौर साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत, यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने या फिर पानी पीने या अवसर पैर डुबाकर उस जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर गीता दत्त की आवाज़ें। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बता रहे, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे साथी कह रहे हैं, हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाजों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुरताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरे प्रकृति से लोगों का मन मोह लेती है। और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदें प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है। एक हल्की सी नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं, तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार

हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत ना किसी सभा में बजता है, ना किसी स्टेज पर जहां हम रुक कर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं, उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भर कर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठ कर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत। हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूं। वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती हैं वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि घंटों की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदें, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत, इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सकें। आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भावविवल हो जाते हैं, और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूं हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूं, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल, जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छेड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल है जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए। और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे। उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कलकल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है। लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब तिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत। यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है संगीत के आदि स्रोत, भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा, वो कह रहे हैं छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। इमासर देसाई और मलेशिया की आवाज उम्मीद, जावेद अख्तर ने से लिखा, ए आर रहमान का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत की मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई, डरी सहमी सी, कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ सेकंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षणभंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक, पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसे भी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार के सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई, और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपनी संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है। ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम शोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम शोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र, और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है, और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं, और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूं। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर

वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौवों का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है। महानगरों कार्य व्यवस्थाओं से आजीज होकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूं, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज़ में।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे लाले जुनर मोहे लाले जुनर या
1: संघर्ष फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें जरूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं, वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

समझी। संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना, पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके तो किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक

0: 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को

0: लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेटा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता

0: आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजयंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे

0: तो अच्छा लगता है, शौक
1: बिल्कुल
0: हमारे ये अच्छे रहते हैं
1: हाँ,
0: छुपा
1: और
0: के
1: ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए।
0: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है, वहाँ
0: जी
1: ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको
0: जी
1: और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, और अभी
0: जी
1: तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12 12 14 14 घंटे काम होते हैं। तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
0: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं, इन दिनों तो क्योंकि ज़्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फ़ोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती हैं, भावनाएं अच्छी आती
1: और
0: हैं।
1: कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द, तो वो आप भूल जाते हैं।
0: जी
1: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है, उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं। कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
0: जी
1: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी। और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
1: जी
0: सेवा से वो जुड़ी हैं।
1: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
0: जी
1: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
0: जी
1: होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना,
0: जी
1: लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
0: दुख
1: अब
0: में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के
0: जी
1: फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन।
1: अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है। अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना है, तो उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का ईश्वर की पूजा पुण्य की तरह पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्म होता है वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक, और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशन को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं और उसके उनके

0: अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता कितनी है,
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंग दान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे आंख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है, समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है, करना पड़ता है। तो ये बात हो गई, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं, लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी, वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है, बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पर आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
0: एक गीत
1: सुनते हैं।

0: स्नेहा
1: जी,
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक कहानी उन्होंने बता रही है कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है
1: जी।
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए, कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं, भले आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें महानगरों में, आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो लोग वहां भी जाकर खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों को हमने देखा, तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो वहां पर खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने, कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते हैं, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें, आप कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम

0: बाकी रह गए थे। जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो हाँ। फिर जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना, मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते हैं।
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं। तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
0: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं। जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं, बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूं, लेकिन वहां जाने पर देखती हूं कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किनसे बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकह

0: एक किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली, और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं, और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की, जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
3: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था। और तो और, स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
2: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर। और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
3: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुकीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए, और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
2: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया, और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया, और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती। तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
3: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रहीं, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
2: जी। और पैट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
3: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की

0: उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा, क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
1: और तकरीबन 70 वर्ष की पेट्रिशिया मुखीम हमें सिखाती हैं कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
0: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पेट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
1: जी।
0: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे. हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं. उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ. अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ. ऑफिस का काम भी चलता रहेगा. भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है. इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं. विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं,
1: क्या कुछ क्या भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है. ऐसा ही तो मतलब हमने शुरुआत से ऐसे ही तो सब बड़े हुए हम सब.
0: सही बात,
1: रेडियो सुनते सुनते सारे काम करते करते.
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय.
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है. एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे. ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है. हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है. इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ. पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ. मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है. इसके लिए समय निकल ही जाता है. और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ. तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना.
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी. एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है. रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं. और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है. और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है. वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मी संग आंख लड़ी रे. तो क्या गाना सुना दिया जुल्मी संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे. अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते, मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं. एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं. तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है. तो इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है. ये तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते हैं. महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है. और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई, कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं. तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है
1: जी. तो लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी.
0: बिल्कुल.
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है. और जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना.
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक.

0: बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल, और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए। खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूं, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको, जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली, विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म की गजल जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था, तलफ्फुज का बड़ा ख्याल रखती है वो कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो, तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे, तो ये बड़ी बात है। हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए, लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं।
0: सुनते हैं
2: जब सदा संग रहे

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है, और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं। आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है।
1: बिल्कुल, और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, क्योंकि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं, तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए। और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाए नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है, या फिर डिटॉल वगैरह उस पर लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है, हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी, और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे, या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहने, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल, और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रही हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारियो मैं और कल्याणी है, दो बच्चे है मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम फिर।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा बाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा बाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा बाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा बाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते हैं, खेती में भी काम करते।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा, तो बताइए महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास?
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है।
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको?
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते चार पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना

0: चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, निमाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी। भस्मी लगाए तन पर कहते हैं जिनको शंकर, पीते है भंग के प्याले, कहते हैं डमरू वाले।
0: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठाकर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर, बताइए इसके बारे में हमें। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
1: जी बहुत सारा।

0: था।
1: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
0: जी, यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। जी,
1: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: तो मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज में, जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है साबुन के झूले पर।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है। आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें

0: तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
1: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
0: हाँ, उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना, मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
1: तो अभी आप कावा पीते हैं?
0: कभी कभी पीते हैं तो वही तफ वगैरह बुखार, उस पे भी हम वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
1: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
0: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
1: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
0: नून चाय।
1: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
0: हाँ, ये गुलाबी बनते हैं। इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना, उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी,
1: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
1: बिल्कुल सुनते
0: हैं, मजा आता है।
1: बिल्कुल, बताइए, गाना बताइए।
0: मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: तहसील बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से।
1: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
1: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
0: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी, यहाँ
1: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
0: सभी सभी व्यवस्था है।
1: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
0: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
1: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
0: नहीं नहीं
1: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
0: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
1: फिर
0: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की।
1: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
0: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
1: ठीक है,
0: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हो उस जगह पर।
1: अच्छा,
0: कई कई किसान करते हैं वही चीज खेती।
1: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
0: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
1: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई न कोई फसल रहती ही है।
0: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना, उप कर लेंगे।
1: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
0: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
1: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
0: मजदूर भी रहते दीदी, उतना कैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती।
1: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
0: हाँ, कैसा है जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
1: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा
1: तू एक रानी है। चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन का छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देश गान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए गा के।
1: जय स्तुते जय स्तुते श्री महान मंगले दिवासपदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता मंदे यशोयुता मंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, ने मजसी ने परत मातु भूमि ला सागरा प्राण तरमला तरमला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश,
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर असम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी असम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव असम में हुआ था ऐसे बार। बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा,
1: और आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्के से बारिश आते है।
0: हाँ, और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी, तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर असम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो, और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: हमारे असम के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं, तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में?
1: जी जी जी, वीर जरा फिल्म का है ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से।
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है, उन्होंने क्या सोच के रखा है पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी होकर जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो।
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली, तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा
1: बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और सब लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, सभी सोचता होगा।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना
1: हाँ।
0: बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी, खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: जी
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी। कैसे हैं आप?
1: बस बस मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है। तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो। बाद में और टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: एक ही रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरे 77 अभी पूरे होने वाले हैं।
0: 77, इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी, मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ, उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड से फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी है जिन पर रखकर सुना जा सकता है?

0: लगा के
1: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या बात है, चलिए
1: का काम चल रहा है सारा।
0: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप?
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: भी साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी केवरा करंजवार दरहोरा सिमई खरसोता परमेश्वरपुर सतकोना मेंड्रा प्रेमनगर कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये कनकपुर रामपुर लुर्गी महावीरगंज पेंडारी मेंढारी कोटराही मदनपुर धंधापुर उधवा कटरा कुंदी कला रेवतपुर छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला दोरना जरहाडी जोरी बिल्मा रघुपुर ढेकी डोली एरन नवापारा गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और सन्ना में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो बिलासपुर सारंगडाण बंदरचुआ लोढ़ा आम्बा डोडा पानी सेमरा दरावकोना दनगरी नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 64 है। ये प्रेमनगर पोटिया इंचपारा कुड़ेकेला बोजिया जमाबी आमापाली पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बैगामार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया चक्रधरपुर धुमाबहाल पूंजी पथरा तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी कमतरा चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर नवागांव

0: अल दादर कौहा बहरा छताल डबरा मुरुम डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोड अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण शाम में गजल 5:10 पर पेश करेंगे। 5:30 पर सुनेंगे घर द्वार, जिसमें आज के गोट का विषय रहेगा महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़ें। चर्चा में सुनेंगे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मिलकर डेंगू को हराएं योजना के अंतर्गत अटल पेंशन योजना। स्वास्थ्य चर्चा में संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य का आधार। फिल्म संगीत सुनेंगे 6:20 7 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 7:30 पर। संसद समीक्षा 8 बजे। 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीत होगा 8:15 पर। श्रोताओं में एक सूचना सुनिए। एक अज्ञात पुरुष उम्र 65 से 70 वर्ष बड़े डूमरपाली के अम्बेडकर नगर नहरपार के पास मृत अवस्था में पड़ा है। पता चला है कि उक्त मृतक चपले एवं आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। शरीर से वृद्ध कमजोर है कि सूचना पर थाना खरसिया के मार्ग क्रमांक 64/2025 चौक कर पंचनामा कार्यवाही कर जांच किया जा रहा है। उक्त अज्ञात मृतक पुरुष के संबंध में अभी तक वारिसान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फीट, रंग सांवला, सिर में सफेद बाल है, दाढ़ी में सफेद लंबा बाल है, शरीर में भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ पाया गया है। एक और सूचना सुनिए। दिनांक 9/3/25 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से मर्ग संबंध में डॉक्टर द्वारा लिखित तहरीर पर थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर शव को ससम्मान कफन दफन कराया गया है। घटना क्षेत्र खरसिया होने से डायरी प्राप्त किया गया है। मृतक गोविंद राम चौहान उम्र 60 वर्ष का, ग्राम कुनकुनी के हर मोहल्ला में एवं आसपास गांव में वारिसान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, सिर में बाल नहीं है, पतला दुबला है, शरीर में भगवा रंग का कुर्ती सफेद रंग का पजामा पहना हुआ पाया गया है।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड।

इसकी भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम में गजल का। मेहदी हसन की आवाज और संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं इस गजल को। तस्लीम फाजली की ये रचना है।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड वीज

0: वर्चुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में और संगीत निर्देशन में गजल को, जिसे लिखा था बेकल उताशी ने। कार्यक्रम में आप सुनिए फरहत शहजाद खालिद शरीफ के शब्दों को, संगीत दिया है रफीक हुसैन ने गुलाम अली की आवाज में।

गुलाम अली के गायश गजल के साथ ही गजलों का कार्यक्रम शामी गजल अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। संध्या के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार सुनैया दाई बहनी दीदी लैका सियान संगी जहुरिया सबो झनला रीना के राम राम। और बहनी हो आज के ये घर द्वार कार्यक्रम के बैठकी माँ का गोट बात हुई तेकर चर्चा सबले पहली करबो। तो बहनी हो आज के गोट रही महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़े। चर्चा के विषय रही सतर्क रहें सुरक्षित रहें मिलकर डेंगू को हराएं। और योजना में बहनी हो आज चर्चा करबो अटल पेंशन योजना की। स्वास्थ्य चर्चा माँ गोट करबो संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य का आधार। और बहनी हो संगे संग सुनबो संदेश और गुरतुर लोकगीत। ता बहनी हो हमन हाँ आज के गोठ माँ आगू बढ़बो त महिलाएं पोषण वाटिका से जुड़ें। बहनी हो शरीर के अच्छा स्वास्थ्य पर सही पोषण के जरूरत होते। आजकल बाजार में खाए पिए के हर जिनिस मिलत हुए, यहाँ तक कि बेमौसमी साग सालन तको मिल जाते, लेकिन यह जेब में भी भारी पड़ते। ये समस्या के हल हवे पोषण वाटिका। बहनी हो गांव घर में प्रायः बारी बखरी होते, एकर उपयोग हमन हाँ पोषण वाटिका के रूप में कर सकथन, जेमा आप मन हाँ ताज़ा फल सब्जी औषधीय पौधा या जड़ी बूटी उगा के अपन परिवार के पोषण ला सुनिश्चित कर सकता। बहनी हो ये पोषण वाटिका से नारी प्राणी मल्ला जुड़े के उद्देश्य यही हवे कि आप मन हाँ अपन और अपन परिवार के पोषण के ध्यान रखो, बेहतर और उला बेहतर बनावाओ, खास करके लैका गर्भवती माता और शिशुवती महतारी मन के संपूर्ण पोषण के विशेष ध्यान रखना हवे, ताकि ओखर मन के स्वास्थ्य अच्छा रहे। पोषण वाटिका के उपयोग से आप मन हाँ अपन खाली जगह में तरह तरह के साग सालन मौसम के हिसाब से लगा सकता हो, अपन घर में ही ताज़ा रसायन मुक्त साग सालन उगा के लाभ ले सकता हो। घर के ताज़ा जिनिस पोषक तत्व से भरपूर तो रहीच, संगे संग स्वस्थ भोजन आप मल्ला मिली, बढ़िया रसायन मुक्त भोजन मिली, एकर से कुपोषण जो है दूर रही और आप मन के स्वास्थ्य भी बढ़िया रही। ताज़ा साग सालन विटामिन और खनिज से भरपूर जो है उकर लाभ आप मल्ला एकर से मिली और जैविक खेती ला भी बढ़ावा मिली। बनी हो रसायन मुक्त खान पान से स्वास्थ्य ला आप मन के जो है वो सेहत भी बढ़िया रही और पोषण तो मिलबेच करी तो शरीर भी बढ़िया रही, शरीर मजबूत रही। और जब शरीर मजबूत रहे ले बनी हो तो फिर रोग राही के संभावना बहुत कम हो जाते। शरीर ला स्वस्थ राखे के जुगत आए ये पोषण वाटिका। घर में ही आप मन हाँ बढ़िया कनले पालक है, मेथी गाजर मूली धनिया है और इसने ही झाड़ी वाले फल जैसे कि पपीता है अनार है नींबू केला ये मल्ला आप मन उगा सकत हो। मसाला में बहनी हो आप मन घर में बढ़िया उगा सकता हो, धनिया मिर्चा जैसे कतकोन साग सालन अपन घर में लगा सकता हो। एकर से आप मल्ला ताज़ा भोजन के स्वाद तो मिली ही, संगे संग आपके घर के उगाए जिनिस हवे त आप ला बाजार से भी खरीदे के जरूरत नहीं हुए, जेकर से आप मन के पैसा के बचत तको हो ही। बहनी

तो आप मन भी अगर आपके पास थोड़े भी खाली जगह हवे ता उकर जरूर करके पोषण वाटिका के रूप में उपयोग कराओ और सुग्घर अकन ले साग सालन अपन हाथ से खुदे लगावाओ। और बहनी हो खाली जगह नहीं है ता आप मन हा अपन घर के छत मा गमला मा आउ तो आउ खाली बेकार पड़े जो डब्बा होते उमा भी आप मन हा माटी भर के छोटे छोटे पौधा है भाजी जैसे ही टमाटर है भाटा है पालक मेथी वैसने ही तुलसी एलोवेरा लेमन ग्रास जैसे जिनिस ला लगा के अपन सेहत के ध्यान रख सकता हो। आप मन हा अपन भी सेहत के ध्यान रखाओ और अपन परिवार के भी सुग्घर अकन ले ध्यान रखाओ। तो बहनी हो पोषण वाटिका लगाए के यही उद्देश्य हवा है कि आप मन हा जो है वो सुपोषण से जो रहे पूरा परिवार जो है वो सुपोषित रहे। तो आप मन हा जरूर करके पोषण वाटिका से जुड़ाओ और अपन बारी बखरी अपन खाली जगह के उपयोग जरूर कराओ और खुदे अपन सुग्घर अकन ले साग सालन ला उगावा और बढ़िया मजा के स्वस्थ जो है वो भोजन के आनंद लेवा। और बहनी हो हमन हा गोड़ बात ला अवगवाबो कर पहली चला सुनिए लोकगीत ला।

बनी हो सुघर लोकगीत सुनेन जेकर गायक कलाकार रीन हे झुमुक लाल दिवांगन चंदन साहू अउ सालिग्राम अउ साथी अउ बहनी हो हमन ह अपन के गोठ मा आगू बढ़बो त सतर्क रहें सुरक्षित रहें अउ मिलकर डेंगू को हराएं। बहनी हो मौसम पानी बरसात के हवय त सबो डहर सीलन अउ डबरा खचवा में पानी भरे दिखना तो आम बात हवय अउ ऐसना में मजा रिथे मच्छर माछी के यानी एकर मन के पनपे के दिन जोन हा हैजा मलेरिया डेंगू जैसे रोग राही के कारण बनते। एकर से सतर्क रहे के सावधान रहे के जरूरत हवे ताकि डेंगू मलेरिया जैसे संक्रमण से दूर रहे जा सके। बेनी हो मच्छर ला अपन घर से तो दूर रखना ही है संगे संग पारा मोहल्ला से भी दूर रखना हवे। एक बात के ध्यान जरूर देना है कि मच्छर झन पनपे और ये बात के हमला ध्यान देना है और ये ला सब ला मिल के ये प्रयास करना होगी। बहनी हो डेंगू के गोट करबो ता ये मच्छर से फैलते जो कि एडिस मच्छर जो उनकी साफ पानी में पनपते यानी आपके घर के आपके आसपास ही हारी थे ता एकर प्रति आप के बहुत ही सजग रहे के जरूरत है कि आप मन हा आप मन के घर के अपन आसपास ही जो है सावधानी रखे की जरूरत है। आसपास पानी जो है अगर पिए के जो पानी है काबर कि यह साफ पानी पनपते तो विशेष ध्यान दे के जरूरत है कि हमन पिए के जो पानी भरथन जो पानी रखथन ओला हमेशा ढक के राखन। कूलर है फूलदान है एकर मन के जो पानी है तो ओला हमेशा बदलत रहन। आओ बहनी हो अभी तो पानी बरसात के दिन हवा है तो कूलर के तो जरूरत नहीं रहा तो ओला पानी ला फेंक के बढ़िया कन ले सुखा के सूखा जगह में बढ़िया तोप ढक के रख दे के है

0: आओ वैसने ही छत में कोनो भी प्रकार के खाली डिब्बा हे, टायर हे, एमा कोनो भी जिनिस बहनी हो जेमा की पानी भर सकते, ओला ध्यान करके पलट के रख दे के हवय ताकि ओमा पानी जो है वो झन भरय। बहनी हो ये ध्यान रखो कि डेंगू के मच्छर ह दिन में काटते और दिन में ये प्रति बहुत ही सावधान रहे है कि हवय कि दिन में अगर सोथन तब मच्छरदानी के जो प्रयोग है जरूर करे के हवय, मच्छरदानी लगा के ही सोना हवय। और वैसे ही बहनी हो फुलबाही के कपड़ा पहना, मच्छर भगाए के अगरबत्ती, नीम के धुआं आदि के उपयोग से अपन जो है इकर मन के धुआं के उपयोग, नीम के धुआं के उपयोग आप मन हा जरूर करके अपन घर में करो। और डेंगू के प्रति सावधान रहो, घर के आसपास सफाई रखो, खिड़की दरवाजा में बहनी हो जाली लगा के रख ले भी आप मन हा मच्छर से कुछ हद तक सुरक्षित जो है वो अपन घर ला रख सकते हो। बहनी हो डेंगू के लक्षण जैसे कि तेज बुखार है, सिर दर्द है, आँख के आसपास दर्द, जोड़ में दर्द और मांसपेशी में दर्द है, उल्टी है, कमजोरी और ऐसे जो सांस में तकलीफ आवत है, ऐसे अगर लक्षण दिखा थे तो बहनी हो डेंगू हो सकते। तो इकर प्रति हमेशा सावधान रहे कि हवा कि कोनो भी प्रकार के ऐसे कोनो भी समस्या दिखा थे, आ थे, लक्षण दिखा थे तो जरूर करके अपन डॉक्टर जो है नज़दीक के ओकर से संपर्क करे के हवा। बहनी हो डेंगू के उपचार जो है वो बहुत जरूरी है, एमा असावधानी जानलेवा भी हो सकते हैं, ओकरे सेती एकर प्रति सतर्क रहे के जरूरत है। और ऐसे कोनो भी प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते तो तुरंत करके डॉक्टर से संपर्क कराओ और जाँच कराओ और पूरा डॉक्टरी इलाज उपचार कराओ, पूरा आराम लेवाओ। और डॉक्टर के सलाह के बिना बहनी हो कोनो भी दवा ला नहीं लेना है, ये आपके सेहत पर खतरा हो सकते, ये सावधानी आप मल्ला जरूर रखना हवा। और सावधानी से ही डेंगू के पूरा इलाज कराया की जरूरत है, ना कि आधा अधूरा। बहनी हो उपचार से बेहतर है अगर रोकथाम कर ली जाए, यानी डेंगू जैसे समस्या हो ही नहीं ऐसे सावधानी और उपाय कर लेना चाहिए, तब मच्छर से अपन ला, अपन आसपास ला, अपन घर ला मुक्त रहा और डेंगू से बचाओ। तब बहनी हो हम सब के सम्मिलित प्रयास रहे कि जो आसपास ऐसे कोनो भी डबरा खचवा है उमा पानी झन भरा, ये बात के ध्यान रहे। कीटाणुनाशक घोल अगर नाली हवा तो उमा डालत रहन, ये हमर मन के दायित्व है ताकि हम सब स्वस्थ रहन। बहनी हो ये तो होइसे गोट गोट ला आओ अगवाबो, ओकर पहली चला सुनिए संदेश ला।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: बहनी हो अभी सुने संदेश और हमन हा योजना के गोट करबो ता अटल पेंशन योजना। बहनी हो 1 जून 2015 के शुरू हुए अटल पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना हवे, जेमा भारत सरकार ह असंगठित क्षेत्र के लोगन मन ला वृद्धावस्था में पेंशन के दायरा में लाना हवे। वो मन भी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सक्षम हो और वृद्धावस्था ला सम्मान के साथ गुजर बसर करे, ये उद्देश्य से ये योजना जो है अटल पेंशन योजना शुरू किए गई हवे। ये योजना के लाभ बहनी हो कोनो भी भारतीय जेकर आयु 18 से 40 वर्ष के हवे ए मन हा ले सकते। ध्यान रखे के है कि ए मन हा आयकरदाता ना हो। बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी हवे। प्रीमियम के राशि के योगदान के हिसाब से पेंशन जो हवे 1,000 से 5,000 तक प्रति माह पेंशन लाभ दिए जाते हैं, जो कि 60 वर्ष के आयु के बाद जो है वो मिलना चालू होते हैं। योजना के लाभार्थी के मृत्यु के दशा में उकर जीवन साथी ला पेंशन मिलते और अगर दोनों के मृत्यु हो जाते ता संचित जो धन है पेंशन राशि है वो नामांकित व्यक्ति ला मिल जाते। पेंशन योजना पर अंशदान जो है बहनी हो मासिक, छमाही या वार्षिक रूप में हो सकते, जो कि ऑटो डेबिट के

2022 के अनुसार आय करदाता नहीं हो तो आप मन भी ये सुघर योजना के लाभ ले सकता हो ताकि आप मन के जो वृद्धावस्था है बुढ़ापा है उमा कोनो भी प्रकार के आर्थिक परेशानी नहीं हो और आप मन के बुढ़ापा जो है वे निश्चितता से बसर हो सके। आपके आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता वृद्धावस्था में सुरक्षित रखे के सुघर उदिम हवे अटल पेंशन योजना ता आप मन जरूर करके ये योजना के लाभ लेवो। तबे नहीं हो ये तो हो इसे गुड बात हमन हाँ गुड बात ला अव अगवाबो कर पहली चला सुनिए लोकगीत ला।

0: तबहिनी हो लोकगीत सुनें जेकर गायक कलाकारहीन है माया खापरडे। और बहनी हो स्वास्थ्य चर्चा में संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य का आधार। बहनी हो भोजन और सेहत के संबंध सीधा संबंध आवे। खान पान जैसे रही वैसे ही सेहत रही। ता अच्छा सेहत भर खान पान जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो पोषक तत्वों से भरपूर रहे। शरीर ला स्वस्थ रखे पर भोजन माँ हर तरह के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व, रेशा, ये सब जो है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहते। और यही तत्व से हमार शरीर ला ऊर्जा मिलते, एकर वृद्धि और विकास होते हमार शरीर के। तब बहनी हो पोषक तत्व से भरपूर भोजन में संतुलन रखना भी बहुत जरूरी हवा। हमार आहार में हमार पोषक तत्व अपन आयु और लिंग के हिसाब से अलग अलग हो सकते। कोनो भी पोषक तत्व के कमी से शरीर ह कमजोर या रोग राही लगे के खतरा रहते। तो संगे संग कोनो भी पोषक तत्व के अधिकता हो ले भी शरीर ह प्रभावित हो सकते। बहनी हो ये बात के ध्यान रखे कि हवा पोषक तत्व के मात्रा उचित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। शरीर के हर अंग ला ओकर सही मात्रा मिले और अपन काम जो है शरीर के अंग मन हा सुचारू रूप से करत रहे। एकर बर यानी कि खाना माने कि बहनी हो बहुत जरूरी हवा है कि खाना मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि भोजन के संतुलित पोषण जो है वो मिलना भी जरूरी हवा है, तभी स्वास्थ्य बेहतर रही। तभी नहीं हो अपन सेहत के ध्यान रखा, मस्त रहा, स्वस्थ रहा और एकरे संग हुआ थे जाए के बेरा। ता देवा विदा रीनाला, राम राम, जय जोहार।
1: ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM बैंड पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। सुने कार्यक्रम विवरण फिल्म संगीत सुनेंगे 6:20 7:00 प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे 7:30 पर। गैर फिल्मी गीत होगा 8:15 पर। संसद समीक्षा 8:00 आप सुन सकेंगे। श्रोताओं एक सूचना सुनिए। भारत सरकार कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE द्वारा इंडियन स्किल कॉम्पिटिशन 2026-27 के दिशा निर्देश जारी करते हुए कुल 63 स्किल सेक्टर में अभ्यर्थियों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु समस्त अभ्यर्थियों का पंजीयन केवल स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी समय सीमा 31 अगस्त 2026 तक निर्धारित है। आप www.skillindiadigital.gov.in पोर्टल से स्वपंजीयन कर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता देश के युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्योग की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े विविध कौशल क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। उक्त प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा अंतर्गत अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद का होना चाहिए। तथापि डिजिटल कंस्ट्रक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ICT नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, मैक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, वाटर टेक्नोलॉजी, डेंटल प्रोस्थेटिक्स एवं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सहित कुल 13 स्किल्स के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2003 अथवा इसके बाद होना चाहिए। अधिक जानकारी हेतु आप स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल www.skillindiadigital.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुँच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में, और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: संदेश से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आप हमें ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 107.7 MHz पर। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
4: रायपुर केंद्र है।

0: अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में आयोजित एक ठन विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के छात्रवृत्ति और पुरस्कार दीन। रायपुर में राखेगी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ ला 13,840 करोड़ रूपया के निवेश मिले है। आउ बस्तर तिरंगा यात्रा आज सुकमा और बीजापुर जिला के आने आने क्षेत्र ले होके गुजरिस। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में आयोजित एक ठन विशेष समारोह में 100 ले ज्यादा कलाकार मनला बछर 2024 और 2025 बार संगीत नाटक अकादमी के छात्रवृत्ति और पुरस्कार दीन। एमा पद्मश्री ले सम्मानित छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराना के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठला संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप देगी। वहीं बस्तर के लुप्त होवत पारंपरिक लोक धुनला सहेजने वाला बस्तर बैंड के रंजन पांडेला लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार ले सम्मानित करेगी। ये मौका में राष्ट्रपति हा किहिन की पुरस्कार लेवैया मन में आधुनिक भारत के प्रतिभा और समर्पण दिखते। उमन किहिन की संगीत के अनेक प्रणाली है, नृत्य के कतकोन शैली है और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप है। राष्ट्रपति हा कहिन की कलाकार मन हा देश भर में लोक संस्कृति ला सहेजे बर अपन बड़े भूमिका निभावत है। छत्तीसगढ़ शासन डहर ले भारतीय उद्योग परिसंघ के मदद ले रायपुर में राखे गए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ ला 13,840 करोड़ रूपया के निवेश मिले है। ये परियोजना ले प्रदेश में 10,900 ले ज्यादा रोजगार के अवसर बने की संभावना है। ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये मौका में उमन कहन की स्टील और खनन उद्योग छत्तीसगढ़ के औद्योगिक पहचान है। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्टील उत्पादन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील के अधिकतम मूल्य संवर्धन घलो प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए। रेल मंत्रालय हा छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और बुनियादी ढांचा के विकास बर वर्तमान बछर में 7,470 करोड़ रूपया के बजट आवंटित करे है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हा लोकसभा में सांसद विजय बघेल के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दीन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 ठन स्टेशन में विकास के काम चलत है, जेमाले 10 ठन स्टेशन के काम पूरा घलो हो गए है। दल्ली राजहरा रावघाट नवा रेल लाइन परियोजना घलो पूरा हो गए है और रावघाट जगदलपुर रेल लाइन में निर्माण के काम चलत है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये बखत प्रदेश के आने आने जिला में तिरंगा यात्रा निकाले जावत थे। यही कड़ी में आज सूरजपुर जिला के विश्रामपुर में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालेगी। ये तिरंगा यात्रा विश्रामपुर के शासकीय कन्या हाईस्कूल ले शुरू होके आने आने रद्दा ले होवत वापिस विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। ये यात्रा में स्कूली छात्र छात्रा जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मन के संगे आम लोगन शामिल हुईन। उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 241वां बस्तरीय वाहिनी सेड़वा डहार ले आज जगदलपुर में तिरंगा मार्च के आयोजन करेगी। ये दौरान जवान मनहा ग्रामीण मनला स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्र पर उनकर कर्तव्य के बारे में जागरूक करें। ये मौका में सेड़वा गांव के स्कूली लड़का मनहा सामूहिक रूप ले वंदे मातरम के गायन करें। बस्तर संभाग में निकाले जावत तिरंगा यात्रा के दूसर दिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप हा आज दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंच के पूजा पाठ करें। एकर बाद तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हा जिला के 211 सर्वोच्च बलिदानी वीर जवान मन ला नमन करत कहिन कि बस्तर की जनता समाज प्रमुख जनप्रतिनिधि और पत्रकार मन के मदद ले नक्सलवाद के अंत संभव हो मन कहिन की तिरंगा यात्रा वो क्षेत्र ले गुजरत है जहां कभी नक्सल आतंक के सेती पहुंचना मुश्किल रही। आज दंतेवाड़ा ले निकले ये यात्रा सुकमा और बीजापुर जिला के आने आने जगह ले होके गुजरी। उन्हें काली तीसर दिन तिरंगा यात्रा बीजापुर ले आवापल्ली उसूर गलगम नंबी ताड़पाला होवत कर्रे गुट्टा पहाड़ी पहुंची जहां तिरंगा फहराए के संग एकर समापन होही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के

0: विश्वसनीयता लिए हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगु बाढ़बो बाचे समाचार कोती। स्वतंत्रता दिवस समारोह ले पहली आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल के आयोजन करेगी। रक्षा मंत्रालय हा सोशल मीडिया पोस्ट में के हिस की रिहर्सल ले समारोह के औपचारिक वैभव सटीकता और देशभक्ति के भावना प्रदर्शित हुई। ए बच्छर के समारोह वंदे मातरम के 150 बच्छर पूरा हो के उत्सव मनाही और एकर मुख्य थीम हवा विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। एति छत्तीसगढ़ में घलो स्वतंत्रता दिवस समारोह के तैयारी अंतिम दौर में है। आज रायपुर के पुलिस परेड मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। ये दौरान सुरक्षा व्यवस्था परेड और दूसर तैयारी ला आखिरी रूप देगी। स्वतंत्रता दिवस के परेड में 17 टोली शामिल हुआ थे। एमा BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB के टुकड़ी मन सलामी दी। ए बखत बिहार पुलिस के टोली घलो परेड के हिस्सा बनी। एकर अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के पुरुष और महिला टुकड़ी संग जेल पुलिस के टुकड़ी घलो परेड में शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस समारोह ले पहले काली 14 अगस्त के राज्य के आने आने जिला में खेल और युवा कल्याण विभाग डहाले स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन करे जाही। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा काली नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले भेंट करिन। ये दौरान उमन हा अपन त्रैमासिक कार्य प्रगति रिपोर्ट ला श्री शाह ला सौंपिन और मंत्रालय और संसदीय क्षेत्र के काम के जानकारी दिन। उन्हें छत्तीसगढ़ के आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम्हा घलो काली नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले भेंट करके बलरामपुर जिला मुख्यालय में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोले के मांग करिन। केंद्रीय रेल मंत्री हा एकर ऊपर सहमति जतावत जल्दी सुविधाला शुरू कराए के आश्वासन दीन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC हा सहायक ग्रंथपाल प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम ला घोषित कर दी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत सहायक ग्रंथपाल के कुल 7 खाली पदमा भर्ती पर हुई ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 115 अभ्यर्थी मनला मुख्य परीक्षा पर पात्र पाए गए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के टीम हा आज बिहनिया राजनांदगांव के कारोबारी मनीष भंसाली और नाहटा समूह के घर और कार्यालय में छापामार कार्रवाई करे है। रायपुर और भोपाल ले पहुंचे ईडी के टीम हा DMF घोटाला ले जुड़े मामला में ये कार्रवाई करे है। टीम डहर ले दस्तावेज के जांच करे जावत है। अब थोरकुन समाचार सारमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा कक्षा 12वीं के पूरक परीक्षा परिणाम ला घोषित कर दे है। विद्यार्थी मन हा अपन रिजल्ट ला डीजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल मा देख सकत हैं। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा विद्यार्थी चिकित्सक और कर्मचारी मन हा नशा ले दूर रहे के और समाज ला नशा मुक्त बनाए मा योगदान दे के शपथ लेन। प्रदेश के आने आने जिला ले पहुंचे अतिथि व्याख्याता मनहा काली नवा रायपुर में प्रदर्शन करिन। ये मनहा शासकीय कॉलेज में नियुक्ति और उसे वाले जुड़े दूसर मांगला लेके प्रदर्शन करत रहिन। रायपुर नगर निगम हा जोन क्रमांक 8 के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 21 में 8 व्यवसायिक परिसर ला सील कर दे है। उन्हें कार्रवाई के दौरान 2 लाख रूपया ले ज्यादा बढ़े बकायेदार मनहा 5,24,000 रूपया ले बकाया राशि के भुगतान कर दिन। कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र के चैतमा तीर हुए सड़क समा दुझन के मौत हो गए और 3 गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। और कबीरधाम जिला में पुलिस हा गांजा तस्करी के आरोप में 3 ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के कब्जा ले करीबन 12 लाख रूपया के 12 किलोग्राम ले ज्यादा गांजा जब्त करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के छात्रवृत्ति और पुरस्कार दीन। रायपुर में रखे गए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ 13,840 करोड़ रूपया के निवेश मिले है और बस्तर तिरंगा यात्रा आज सुकमा और बीजापुर जिला के आने आने क्षेत्र ले होके गुजरिस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:20 हुए हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुमार सानू साधना सरगम की युगल आवाजों में फिल्म सैनिक का ये प्यारा सा नगमा, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की

0: पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे दिल है बेताब फिल्म के गाने को। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार थे के वर्मा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। कार्यक्रम में अब सुनिए अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास की आवाजों में सड़क फिल्म के इस गाने को। नदीम सवन ने संगीत से सजाया है, समीर ने गीत लिखा है।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के गाए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM बैंड पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आंगनबाड़ी केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। आकाशवाणी का ये

0: ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेड को फेलोशिप तथा बस्तर बैंड के अनूप रंजन पांडे को लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। रायपुर में हुई ग्रीन स्टील समिट में प्रदेश को करीब 14,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य के विभिन्न जिलों में आज निकाली गई तिरंगा यात्रा, कल स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और ईडी ने आज राजनांदगांव में 2 कारोबारियों के यहां छापे मारे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। इनमें पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराने के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेड को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया।
10: श्री रामलाल बरेड को भारतीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्री रामलाल बरेठ।
0: वहीं बस्तर की लुप्त होती पारंपरिक लोक धुनों को सहेजने वाले बस्तर बैंड के अनूप रंजन पांडे को लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार।

0: होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों से अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का आग्रह किया। बस्तर बैंड के अनूप रंजन पांडे ने लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और मन प्रसन्न है और ये सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार साथी हैं, सब लोगों की दुआएं, सब लोगों का कृपा, सबके आशीर्वाद रहा है। बहुत ही मुझे खुशी है और जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है काम करने के लिए।
1: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में छत्तीसगढ़ को 13,840 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,900 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ अब अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक मूल्य, अधिक निवेश और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान वर्ष में 7,470 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सांसद विजय बघेल के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों के विकास का काम जारी है, जिनमें से 10 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हो चुका है। दल्ली राजहरा रावघाट नई रेल लाइन परियोजना भी पूरी हो गई है, जबकि रावघाट जगदलपुर रेल लाइन पर निर्माण कार्य जारी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी त्रैमासिक कार्य प्रगति रिपोर्ट श्री शाह को सौंपी और मंत्रालय तथा संसदीय क्षेत्र के कार्यों की जानकारी दी। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम ने भी कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बलरामपुर जिला मुख्यालय में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए जल्द सुविधा शुरू करने का आश्वासन दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह राजनांदगांव के कारोबारी मनीष भंसाली और नाहटा समूह के घर तथा कार्यालय में छापामार कार्रवाई की है। रायपुर और भोपाल से पहुंची ईडी की टीम ने डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की है। टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने सहायक ग्रंथपाल प्रारंभिक परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत सहायक ग्रंथपाल के कुल 7 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 115 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
3: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने आज दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा उन क्षेत्रों से गुजर रही है जहां कभी नक्सल आतंक के कारण पहुंचना मुश्किल था। आज दंतेवाड़ा से निकली ये यात्रा सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। वहीं कल तीसरे दिन तिरंगा यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंचेगी, जहां तिरंगा फहराने के साथ इसका समापन होगा। इस 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप कर रहे हैं। इस बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज

0: जाजपुर जिले के विश्रामपुर में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा आज राज्य के अलग अलग जिलों में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वहीं कल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। भारत के विभाजन की विभीषिका और विस्थापित लोगों के संघर्ष और साहस का स्मरण कराने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी होंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आज रायपुर के पुलिस परेड मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेड और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में कुल 17 टोलियां शामिल हो रही हैं। इनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की टुकड़ियां सलामी देंगी। इस बार बिहार पुलिस की टोली भी परेड का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ियों के साथ जेल पुलिस की टुकड़ी भी परेड में शामिल होंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में घुड़सवार दल और डॉग स्क्वाड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कल 14 अगस्त को राज्य के विभिन्न जिलों में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में कल संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित आजादी की धुन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड प्रस्तुति देकर देशभक्ति का माहौल बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का सुनहरा अवसर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बस्तर और सरगुजा संभाग में नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की शपथ ली। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सरगुजा जिले के करजी गांव में कल से नशामुक्ति पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अंबिकापुर विधायक प्रबोध मिंज करेंगे। दुर्ग जिले में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं ने कल नवा रायपुर में प्रदर्शन किया। ये व्याख्याता शासकीय कॉलेजों में नियुक्ति और सेवा से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के चैतमा के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेड को फेलोशिप तथा बस्तर बैंड के अनुप्रंजन पांडे को लोक संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। रायपुर में हुए ग्रीन स्टील समिट में प्रदेश को करीब 14,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य के विभिन्न जिलों में आज निकाली गई तिरंगा यात्रा, कल स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और ईडी ने आज राजनांदगांव में 2 कारोबारियों के यहां छापे मारे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिन्दी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 7 बजे हैं, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम साजन का घर। फिल्म के इस गाने को आइए सुनते हैं कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: Samo Samaya.
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुँच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: यादों के मौसम फिल्म के नगमे को आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, विवेक ओबेराय की आवाजों में। संगीत में प्रिया है आनंद मिलिन ने, सलाहुद्दीन परवेज की ये रचना थी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में इस गाने को, जिसे लिखा है बलबीर निर्दोष ने, धुन बनाई है अरुण पौडवाल ने। फिल्म शिव महिमा का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

कार्यक्रम में अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज में सपने साजन के फिल्म के इस गाने को। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: दिल आशना है फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर साधना सरगम की आवाजों में। संगीतकार थे आनंद मिलिंद, गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। FM 107.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7:23 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: छत्तीसगढ़ के माटी में सिर तो ना है मोनिका कि जब माटी हमारे पर अतका करते भाई देखे तो हमारे जीवन के आधार है माटी। हम जिन अतका बाढ़त हन पलत हन उसी हमार माटी महतारी के सेती हरे। तो हम हर एक मनखे के ये फर्ज हरे कि हमो अपन माटी बर करन, माने माटी नुकसान झन पहुंचावन, ऐसे काज करन कि हमार जो माटी है वो हमार अवैया पीढ़ी तक के हमला पालत पोसत रहे।
2: सिर्तन कहा था नीतू दी, देख का होते ना कि हमन कतकुन बखत समझ नहीं पान, फिर हमारे संगवारी मन ला ये बहुत बने तरीका ले पता है कि हमारे कोनो भी तिहार बार हो है हमार वो माटी ले जुड़े हवे हाँ और देखे जाए तो ये हमारे पर एक वरदान है प्रकृति की, जिला हमला सहेज के रखना है, संभाल के रखना है।

0: नीतू दीदी राम राम।
1: राम राम मोनिका। और कार्यक्रम सुनैया हमार जम्मू संगवारी मल्ला हमार दुनो के
2: राम राम।
0: नीतू दीदी बेरा है किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: मोनिका, हमर राज मा खेती किसानी के काज ह हमर जिंदगी के आधार आय। बहुत अकन किसान भाई बहिनी मन ह सिर्फ खेत के बीच मा फसल उगाथे और खेत के जन कोंटा कोंट या मेड़ के पाली ला ऐसने खाली छोड़ देते।
1: दीदी बात तो तोर सिरतोन आय, फिर हमर ये जन मेड़ मन के सही उपयोग के बात करबो ना तो कमती खर्चा मा ज्यादा आय कमा सकथन। भाई मेड़ मा रुख राई और साग भाजी लगाए ले ज्यादा पैसा कमाए के मौका मिलते, संगे संग खेत के माटी के कटाव घलोक रुक।
0: बिल्कुल सही बात के है मोनिका, ऐसे है कि मेड़ मा ऐसा रुख लगाना चाहिए जेखर ले हर बछर बने कमाई होवे और जेखर छाया ले मेड़ के तीर के फसल ला नुकसान झन होवे। जैसे देखा ना तो फल के बात करा ना तो पपीता है केला है, ये रुख मन जल्दी बाढ़ते और एक दो बछर मा ही फल देहे बर शुरू कर देते।
1: अब ऐसने है ना नीतू दीदी, मुनगा है, मुनगा के तो फर और पाना दोनों के बाजार में भारी मांग रही थे।
0: बिल्कुल
1: एला ज्यादा देखभाल की घलोक जरूरत नहीं रहा है और तेखर पाए के ये मुनगा मेड़ बर अच्छा विकल्प है। वैसने है जाम और नींबू मेड़ के कछार मा लगा के हर बछर नीक पैसा कमा सकथन।
0: हाँ मेड़ मा हम ऐसे पेड़ भी लगा सकथन मोनिका जेनला थोकिन बछर बाद बेच के एक घाव मा बड़ अकन कमाए जा सकथन पैसा, है ना। जैसे साल और बांस ये ला खेत मा लगाए ले 10 से 15 बछर बाद बड़ भारी रकम मिलते। बांस लता खेत के घेरा मने जिन बाड़ के था ना ओखरो रूप मा एकर उपयोग कर सकथन।
1: सिर तो दी खेत के मेड़ मा खाली जगह मा मौसम के हिसाब ले भाजी पला लगा सकथन। भाई मेड़ मा राहर बरबट्टी करेला कोहड़ा के बेला फरिया के लगा सकथन। संगे संग छाव वाले मेड़ मा जैसे बात करना तो हल्दी और अदरक की खेती बहुत बढ़िया होगी, एमा बीमारी घलो कमती लागते। भाई रोग राई की समस्या जैसे दूसर फसल मन में देखा मिलते ना वैसे इमा कम रही थे। और दूसर बात ये कि ज्यादा पैसा इकले मन कमा सकथन, काबर की देखिए सब चीज के तो बाजार में बराबर मांग बने चली थे। इसने हमारे विशेषज्ञ मन के कहना है।
0: बिल्कुल विशेषज्ञ मन यही बताते मोनिका कि मेड़ पार मा नेपियर घास या नेपियर बाजरा ला लगा के मवेशी मन पर बछर भर हरा चारा के खर्चा बचाए जा सकते हमारे हर भाई मन।
1: सही बात थी जिन हमारे पशुपालन करिया संगवारी मन है ना ओमन इकले साल भर हरा चारा के उपयोग कर सकते। वैसने ही दलहनी फसल जैसे राहर है, जेकर हमर अगर पेड़ लगाथन तो माटी में नाइट्रोजन की मात्रा बाढ़ते, जेकर ले खेत के उपजाऊ शक्ति घलोक बाढ़ते।
0: फिर मेड़ पार मा रुख लगाए के पहली हमला मोनिका बहुत अकन बात के ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मेड़ मा ऐसा पेड़ झन लगावन जेकर छाव जिन मुख्य फसल है ओमा पड़े, या खेत के मुख्य फसल में अगर छाव पड़ी तो हो सकते हमार खेत के जन फसल है वो बने असन नहीं होही। और संगे संग ये बात के भी ध्यान रखन कि रुख के बेरा बेरा मा छटाई करत रहन ताकि खेत मा धूप बरोबर पहुंचे।
1: तो ये रकम ले खेत के मेला

0: खाली नहीं छोड़ के ओखर सही उपयोग हमन कर सकथन। माने हमर किसान संगवारी मन अगरिया आए के संगे संग ओमन ला खेत पर सुरक्षा घलोक मिल जाते।
1: एखर बार स्थानीय जलवायु है, माटी है, पानी है और बाजार ला ध्यान में राखत हुए फसल या पौधा के चयन करके मेड़ के सही उपयोग किसान के अतिरिक्त आय के मजबूत आधार बन सकत है।
0: भाई ऐसे है नहीं तो दीदी कि हमारे संगवारी मन बड़ जागरूक हो गए हैं। भाई पहले तो हमारे देख छत्तीसगढ़ सिर्फ धान के कटोरा के रूप में जाने जाए, फिर अब रकम रकम की खेती हुआ थे काबर की हमारे संगवारी मन जागरूक होके ये डहर अपन उदिमला करा थे।
1: मोनिका फसल कोनो हो ज्यादा उत्पादन पाए बर ओखर जतन करना बड़ जरूरी है।
0: सिर्फ तो
1: माने खातू पानी के संगे संग रोग और कीड़ा ले बचाना भी बहुत जरूरी है। तेखरे पाए के जब फसल ला पाना मा कोनो समस्या आते तब विशेषज्ञ मन उमा दवाई डाले के सलाह देते। फिर दवाई डाले ले का लाभ होते ये ला कई पैत हमार किसान भाई मन नहीं जान पाए तो यही बात ला ध्यान में रखत हुए क्रम आज की सलाह मा फसल में परणी छिड़काव के महत्व ये विषय मा जानकारी देवर हमर बीच है एस के साहू ये मन है सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय छुई खदाले और संगवारी हो इखर संग गोट बात करत है मोनिका।
0: संगवारी हो आज हमर क्रम मा जानकारी के विषय है कि पर्णी छिड़काव का होते इखर का लाभ है और इखर जरूरत काबर है तो ये सारी जानकारी खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के साहू जी। आप मन सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय छुई खदान मा। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है हमारे क्रम मा।
2: हाँ मैडम।
0: डॉक्टर साहब सबले पहली तो जैसे कि आज हमारे विषय है कि पर्णी छिड़काव ये फसल मन खातिर कत्ता महत्ता के है एकर का महत्व है तो ये बताते हो कि फसल भर पर्णी छिड़काव का होते।
2: बिल्कुल आज के जो है मौसम को ध्यान में रखे जाए तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मल्ला जो पर्णी छिड़काव है पोषक तत्व के ये बहुत ही फायदेमंद है। काबर के वर्षा के जो स्थिति है अभी तक के कुछ क्षेत्र में बढ़िया बारिश हो है लेकिन कहीं न कहीं हमारे किसान भाई मल्ला जब फसल जो है अपन क्रांतिक अवस्था जैसे फ्लावरिंग में या बाली निकलने के समय में पहुंची तो निश्चित रूप से कहा है कि हमला कहीं न कहीं जो है पोषक तत्व ला प्रबंधन करे बर पर्णी छिड़काव के सहायता लेल पड़ी। पर्णी छिड़काव ला हमन सामान्य भाषा में इसे ढंग से समझ सकत हन कि पोषक तत्व जैसे यूरिया डीएपी है नैनो डीएपी है एकर जो है घोल बना करके जो कबर के मृदा में नमी कम रही वो स्थिति में जो है हमला घोल तैयार करके पत्तियों में छिड़काव करना ही पर्णी छिड़काव कहलाते।
0: जी डॉक्टर साहब अभी आप मन बताया कि रिकम रिकम के जो पोषक तत्व है एक हर छिड़काव करना पर्णी छिड़काव कहलाते हैं। फिर ये बताते हो कि कौन कौन से पोषक तत्व के प्रयोग पर्णी छिड़काव खातिर उपयुक्त होते हैं।
2: आप हमारे किसान भाई बन तो जैसे कि कहा है कि सूखा के समय में खाद उर्वरक ला खेत में नहीं डाल सका है तो पर्णी छिड़काव एक अच्छा विकल्प है। इसमें जो है यूरिया नैनो डीएपी और साथ में जो है एनपीके काथे जला हमन 19-19-19 के नाम से जानता जिनमें एन पी के तीनों मात्रा थे तो एक हर जो है जैसे कि यूरिया और डीएपी है नैनो डीएपी है एक हर जो है 2% मात्रा ला पर्णी छिड़काव के रूप में हमारे किसान भाई बन कर सका थे। दूसरा चीज जो है एक में जैसे बताया हूँ कि एन पी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास उसमें 19-19-19 मात्रा पाए जाते एक हर भी लगभग जो है 0.5% से लेकर के 1% का जो है घोल तैयार करके हमारे किसान भाई बहन अपन खेत में डाल करके पोषक तत्व के जो आपूर्ति ला प्रदान कर सका थे।
0: जी डॉक्टर साहब ये बताते हो कि पौधा मन में पर्णी छिड़काव के का लाभ होते।
2: ये बहुत बढ़िया सवाल हरे आप पर के हमारे किसान भाई मल्ला ये चीज़ ला जानना बहुत जरूरी हो जाते कि पर्णी छिड़काव से कैसे कैसे हम फायदा ले सकत हन। जैसे कि हम उर्वरक प्रबंधन करें कि हमारे पास खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो उस समय हमने कहा कि एक तरह के पौधे हम कैसे जो है पोषक तत्व के आपूर्ति कराबो तो पर्णी छिड़काव करे से एक फायदा ये है कि हमला कम मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ते तो कम मात्रा में पोषक तत्व के जो है आपूर्ति हम कर सका था। दूसरा चीज जो है कि पोषक तत्व हम सीधा जो है डायरेक्ट जो है पौधा ले तरह के हम भोजन के रूप में जो है दे सका था। दूसरा चीज ये खरी फायदा है वो है कि हम जो है उर्वरक के जो नुकसान होते जैसे लीचिंग लॉस होते अन्य प्रकार के वोलेटिलाइजेशन जो लॉस होते ओखर नुकसान ला भी हम जो है पर्णी छिड़काव से बचा सकत हन।
0: जी डॉक्टर साहब आप मन जैसे पर्णी छिड़काव के बारे में कहा था तो ये बताते हो कि अलग अलग फसल में एक अलग अलग मात्रा उपयोग होती

0: तो एकर मात्रा के विषय में हमारे संगवारी मल्ला थोड़ा कुन विस्तार ले बताते हो।
1: जैसे किसान भाई मन हा दलहन तिलहन और जो है खाद्यान्न वाली फसल में जैसे कि धान चना गेहूं है अलग अलग तरह के फसल, इसमें जो है यूरिया के जैसे पानी छिड़काव करना चाहते थे 2%, और यदि नैनो DAP या फिर जो है नैनो यूरिया के जो है छिड़काव करना चाहते हमारे किसान भाई मन हा तो भी जो है 2% के इस्तेमाल कर सकते। रही बात जो है जैसे एक ठो में बताया हूँ कि NPK 19 19 19 एकर जो मात्रा है वो जो है 0.5 से लेकर के 1% तक के एला भी जो है दलहन तिलहन फसल में जो है डाल सकते हमारे किसान भाई मन घोल तैयार करके।
0: जी अब बात आवश्यकता के कारण कि भाई छिड़काव खातिर पड़नी छिड़काव की जरूरत या आवश्यकता काबर पड़ते हैं।
1: इखर लिए हमारे किसान भाई मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मौसम बहुत बदलाव हो चुके हैं, पानी जो है समय पे नहीं गिरा थे या फिर पानी गिरा भी है तो जिला किसान हमारे जो है अखंड वर्षा कहीं पानी है कभी पानी नहीं है, तो ये समय का है कि हमारे किसान भाई मन हाँ उर्वरक के जो है समुचित प्रयोग करे में जो है वाला कई तरह की परेशानी है। सबसे दिक्कत ये है कि जो भी हम पोषक तत्व तो हमारे खेत में डाला था तो खाले जो मृदा नमी बहुत जरूरी है, मृदा नमी अगर नहीं है खेत में कमी है तो पोषक तत्व तो हम डालबते ना पूरा जो है नष्ट हो जाए, तो काहे के जो खन नष्ट है ओला बचाए पर हमला जो है पर्णी छिड़काव के आवश्यकता पड़ते। दूसरा चीज़ जो है कि अभी देखा जाए तो जो है सोसाइटी में सहकारी जो समिति में जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे किसान भाई मल्ला पोषक तत्व नहीं मिल पावाते, कबर के अभी जो है एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध भी चला थे एकर भी कारण एकर कारण जो है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व के भी आपूर्ति हमारे देश और प्रदेश में कमी है। यदि पानी छिड़काव हमारे किसान भाई मन इस तरह से करे तो निश्चित रूप से का एकर जो है एक अतिरिक्त लाभ और उखर जो उद्देश्य के जो है आपूर्ति कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि देख हमारे देश की जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा थे जेखर कारण का है कृषि भूमि जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, तो हर किसान भाई चाहते जैसे DAP खरीदते एक किसान भाई है तो DAP की मात्रा जैसे डालना है 1 एकड़ में 1 बोरी है ना, तो हमारे किसान भाई मन का है कि खेत बटरा हो गया अगर उखर पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है 75 डिसमिल भी है तो वह भी हमारे किसान भाई मन का है उर्वरक के जो है जो जरूरत है उखर से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिखर कारण भी का है कि उर्वरक के जो कमी आते तो वाला हमारे पड़े छिड़काव के माध्यम से जो है निदान कर सका था ना, आवश्यक रूप से जो हमारे खेत में पोषक तत्व की आपूर्ति जो है समय के अनुरूप हमन वाला समावेश कर सका था।
0: जी डॉक्टर साहब अब जाति बिराती हमारे संगवारी मल्ला का विशेष बात बताना चाहो आप मना।
1: मैं हमारे किसान भाई मल्ला यही सुझाव दूँ कि एकदम रासायनिक उर्वरक या फिर हमला जो है यूरिया के बोरी ही खेत में या DAP के बोरी ही डालना इसे टाइप से जो है मानसिकता हमारे किसान भाई मन मत बना के रखाओ, काबर के खर वैज्ञानिक कई तरह के जो उपाय है उनमें एक सबसे बढ़िया उपाय जैसे मैं अपन ला बताया हूँ कि पानी छिड़काव कि अपन यूरिया नैनो DAP या नैनो यूरिया के या NPK है उखर भी अपन जो है जो आवश्यक जो मात्रा बताया है जैसे कि यूरिया नैनो DAP के जो है 2% घोल तैयार करके दलहनी तिलहनी और जो है आपके जो सीरियल फसल है उसमें डाल सका था। दूसरा चीज़ जो है सबसे बढ़िया वो एक जो है जिलहमन उर्वरक के था जो है 19 19 19 बाजार में बढ़िया उपलब्ध है इला भी अपन जो है 0.5 से लेकर के 1% तक के घोल तैयार करके फसल में प्रयोग कर सका तो खास से निश्चित रूप से अपन ला जो सूखा के प्रति जो डर है चिंता है कि हमारा उपज यहाँ घट जाए तो खर उपज की भरपाई आराम से हुई काबर के अपन पोषक तत्व ला पानी छिड़काव के माध्यम से बराबर रूप से जो है संपन्न करा सका था। यही मोर किसान भाई मल्ला आवश्यक जो है सुझाव है।
0: डॉक्टर SK साहू जी आप मन आए हमारे संगवारी मल्ला इतना सुघर और विस्तार ले जानकारी दियो कि पर्णी छिड़काव का है एकर का लाभ है एकर जरूरत काबर पड़ते हुए एकर उपयोग कौन ढंग ले कर सकते हैं, ये सारी जानकारी खातिर आप मन की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जय श्री राम।
2: संगवारी हो अभी सुनत रहे क्रम आज की सलाह में जानकारी फसल में पर्णी छिड़काव के महत्व ये विषय में जानकारी देवत रही ने SK साहू सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय छुई खदान और इखर संगोट बात करत रही से मोनिका।

0: है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: नीतू दीदी, इतना सुगर सुगर जानकारी और लाभ के जानकारी के बाद ना हमर संगवारी मल्ला एक ठो सुगर सुगर गीत घलोक सुनवा देतन। तो संगवारी हो सुनथन और आपो मल्ला सुनवाथन मथुरा प्रसाद निषाद संतराम पारकर और गीता ध्रुव के गाये ये सुगर सुगर गीत ला।

0: अभी सुनेन ये सुगर सुगर गीत जिम्मा हमर संगवारी मन कहत रिन की चलो गवई गाँव मा और ये सुगर गीत लगाई मथुरा प्रसाद निषाद संतराम पारकर और गीता ध्रुव मना। और अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, तनीतो दीदी बतावा थे हमारे आज के प्रश्न का है।
1: तो संगवारी हो लिख लो आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है खेत के मेड़ मा हम कौन कौन से रुख लगा है सकत हन या कौन कौन से फसल लगा है सकत हन। एक पैत और सुन लो संगवारी हो हमारे प्रश्न। खेत के मेड़ मा कौन कौन से फसल लगा है जा सकत है या कौन कौन से रुख लगा है जा सकत है।
0: और सही जवाब पर मेल आईडी है राय आज के प्रश्न raya@gmail.com।
1: और संगवारी हो ये प्रश्न के सही सही उत्तर आप मन हा हमारे ये ईमेल आईडी के माध्यम ले आजे के दिन माने अवैया गुरुवार तक हमार तिर पठो दे। और अब बता दे थन संगवारी हो पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न और खर सही सही जवाब। पाछू हफ्ता हमन पूछे रहे अमरूद या जाम के उन्नत किस्म कौन कौन से है। तो एक खर सही उत्तर है संगवारी हो ललित इलाहाबादी सफेदा श्वेता BNR लखनऊ 49।
0: और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम ला मैं बता देता हूँ। संगवारी मन ही महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर गुड़िया और रियांश ठाकुर। पिपरिया ले हैं कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू। कोका भेलाई ले हैं उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष और नंदनी जंघेल। समडिल नवापारा ले हैं दीपक गुप्ता श्रीमती अंकु और राघव गुप्ता। अडार नानघाट ले हैं माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले हैं शिवा यादव राजा गंडई पंडरिया ले हैं शिवा यादव राज यादव चिंटू तरुण चोवा कन्हैया और निर्मला यादव मनहा। और चर डोंगरी पिपरिया ले हैं दुर्गाराम साहू अजय जयकिशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी और माया साहू मनहा। जुनवानी दुर्ग ले हैं सुरित रमेश साहू तारा विद्या साहू जितेंद्र किशन साहू सुनीता ऋषिवंश साहू हिरेंद्र नीलकंठ साहू और मास्टर रंजीत साहू मनहा। तो भाई सही जवाब भेजिया जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। नीतु दीदी देख अभी मौसम ऐसे है कि कभी बारिश हो जाते तो कभी धूप निकल जाते। भाई ये मौसम में सबले ज्यादा जरूरी होते कि हम अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखन।
1: ऐसे है मोनिका ये मौसम में बीमारी के जन वाहक है ओखन मन के जन संख्या है वो ज्यादा बढ़ जाते। विशेषज्ञ ने बताते हम अपन स्वास्थ्य के विशेष रूप से ध्यान रखे बर पड़ते
0: खास करके लैका और सियान मन की जेकर जिम्मेवारी होते हम आई लोगिन मन के तो घर मन के खान पान के विशेष मल्ला ध्यान रखना चाहिए। भाई अब घर में तो फरमाइश हो जाते कि बने बरसात हुआ थे तो पकोड़ा बना डालो भजिया बना डालो फिर ऐसे है कि ज्यादा तेला फूला खाए ले गलत नुकसान होते तो वो बात के ध्यान हमला रखना चाहिए।
1: तेखरे पाए के मोनिका विशेषज्ञ मन सलाह देते कि ये मौसम में हमारा ऐसे खाना खान जेन हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा हो और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ावे। विशेषज्ञ बताते कि ये मौसम में हमला ज्यादा तेल मसाला वाले जिन खाना है उला नहीं खाना चाहिए। भलुक बने हरियर हरियर साग भाजी फल फलेरी ला ज्यादा खाना चाहिए और दूध ला तो विशेष रूप से हमारे रोज के भोजन में शामिल करना चाहिए।
0: अब ऐसे है नीतू दीदी ते बताए ना कि हरियर हरियर साग भाजी खाना चाहिए फिर यही मौसम में सबले ज्यादा कीड़ा बीमारी की समस्या गलो देखा आते हाँ। तो ये भाई की हम माइलोगिन मन की जिम्मेवारी बनते है की उला बने साफ सफाई करके ओखर उपयोग करन पानी रब जैसे बात करन तो घलोक ये होना चाहिए कि ओला उबाल के उपयोग करन। अब ये होते ना नीतू दीदी कि आज के बेरा मा सबले ज्यादा जरूरी है मनखे के स्वस्थ रहना। भाई कखरो भी तबियत खराब होते तो सबले ज्यादा असर पड़ते का है घर के माई लोगों पर होते का कि देख लड़का बीमार है तो बता नहीं सके कि का समस्या है थोड़कुन बड़े लड़का है तो बता देते फिर सियान मन सा घलो दिक्कत हो जाते कि भाई अब लालच में तो खा लेते समस्या तो झेलना ही पड़ते। अब शारीरिक तकलीफ तो ओला हुआ थे फिर मानसिक रूप ले तो सबे जन घर के मनखे मन है वो मन परेशान हुआ थे। तो मोर तो ये कहना नीतू दीदी कि देख तेला फुला तो खाना चाहिए फिर कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए
1: फिर मोनिका छोट छोट और ध्यान रखना चाहिए ये मौसम में हमला। सबले पहली तो देखथन कि हमन हा रोड किनारे या खुला जगह में कई ठन खाए के जिनिस बिकत रही थे ना तो अधिकतर हम देखथन कि जब जिनिस मिलते तो खाए के मन लग जाते। फिर हमला ये ध्यान रखना है कि जिन खुला जिन जिनिस बिकत है।

0: बिल्कुल झनखान। और संगे संग अगर कटे हुए फल बहुत देर तक रखा है तो वह फल ला झनखान। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम फल या साग भाजी बाजार ले खरीद के लावथन बिसा के लावथन तो वो फल और साग भाजी ला बने असन धोलन। और आजकल तो ऐसे की थे कि विशेषज्ञ मन बताते कई जन कि अगर साग भाजी और फल ला थो कि नमक पानी में 10-15 मिनट डुबो के रखन ना तो हमन जिन रासायनिक कीटनाशक डाले रही थन ना वो लगभग उनमें से धुल जाते है।
1: मैंने एकदम सोला आना सही बात कहा था नीतू दी। देख का होते ना जब हम रद्दा में जाथन तो कतकुन बकते ऐसे लगते कि ये बने दिखाते खा लेथन फिर ओखा नुकसान बाद में हमला पता चलते। तो भाई ये बात ला आपके पूर्णता सहमत हो मैं हाँ कि हमें संगवारी मल्ले ये बात के ध्यान रखना चाहिए। महु ध्यान रखो इतनी है कि संगवारी से मन रखी। अब ऐसे बात है नीतू दी कि देख हमन अपन स्वास्थ्य के बात तो करथन फिर हमार जिन पशुधन मन है ओकरो मन के स्वास्थ्य के बहुत ध्यान रखना जरूरी है खास करके ये मौसम में कबर की यही में सबले ज्यादा हमारे पशु मन बीमारी होए के संभावना होते हैं। तो बेरा बेरा में टीकाकरण करवान उकर मन के रहे के खाए के सारी व्यवस्था के हमला ध्यान रखना चाहिए। तो भाई मौसम के मजा तो तबेच ले पाबो ना जब कि हमार पशुधन मन स्वस्थ हुई हमार घर के मन स्वस्थ हुई और हमार मन के मन स्वस्थ हुई।
0: तो संगवारी हो ये रही से किसान वाणी प्रायोजक रही से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो मौसम विभाग ले गला हमला जानकारी मिल गई है काली के मौसम खातिर। तो मौसम विभाग के अनुसार एक दो जगह प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा होए की संभावना है। छत्तीसगढ़ के एक दो जगह में भारी वर्षा होए की घलोक संभावना है। और हम रायपुर के बात करन तो आकाश में बादल छाए रही और एक दो जगह वर्षा या गरज चमक संग वर्षा होए की संभावना है। कृषि उपज मंडी ले मिले बाजार भाव बता देते हैं। तो कृषि उपज मंडी ले मिले बाजार भाव है धान ही 2500 रुपया ले 2576 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन है 9400 रुपया प्रति क्विंटल और तिवरा है 3100 रुपया प्रति क्विंटल।
0: हाँ तो मोनिका घड़ी के इशारा हो गया और जाए के बेरा हो गए। हाँ। तो जाति बिराती बता दे थन संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम काली चौपाल मा आज की बात के संग क्रम आज की सलाह मा खेती किसानी ले जुड़े जानकारी सुनो और संगे संग कृषक प्रश्न मंच के संग गीत संगीत के रंग तको बगर ही। तो काली फेर भेंट हो तब तक नीतू शर्मा
1: और मोनिका के राम राम।

0: की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी।
1: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8 बजने को है संसद समीक्षा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी है, अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी

ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए।

इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में

0: प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत। राज बर्मन की आवाज में सुनिए इस गाने को। मनोज यादव ने गीत लिखा है, संगीत है चिरंतन भट्ट के।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: सुधांशु पांडे की आवाज में आप सुन रहे थे गाने को, हिमांशु कोहली ने संगीत दिया था, युग भूषण के गीत थे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पलक मुच्छल उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में इस गाने को, गीत और संगीत है सतीश त्रिपाठी के।

0: उत्कर्ष शर्मा और पलक मुच्छल के गाइज गाने के साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विधि एवं न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I am mentally healthy, I am able to deal with my mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems.

सो इन सब चीजों को लेके हम सम इंडिविजुअल्स में फील स्ट्रेसफुल, सम इंडिविजुअल्स में फील दैट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो हमारे रिएक्शंस अलग अलग होते हैं. एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट टू ड्राइव अस टू फेस दोज चैलेंजेस. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों. तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज. क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर. एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस. जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बारी पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. Choti choti cheezon ko leke hum nervous ho jate hain. Sometimes we say that mujhe lag raha hai ki bas zindagi ka ant aa gaya hai. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं. We are not eating well. I get up in between at night. Or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है. बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है. And that is a one way of understanding what this is about. Many times, unlike other illnesses, people do report, mere ko bahut depression rehta hai. It should be taken seriously. It's a cry for help that I am not feeling well. Aksar dekha gaya hai ki

0: how do we act at the behavioral level? We need to identify how to prioritize what is important right now, decide when to do it, and if it is not important, maybe delegate to some other junior staff, and if it is not at all important, dump it. Before we talk about mental health, we also talk about physical health, physical exercises, sleep hygiene. This is very important because in the technology era, we are so much dependent on our mobiles that before we sleep, we are on the mobile. When we come back from the work, we are on the mobile and the child gets neglected. So our parenting gets distorted. So sleep, diet, device-free zones, they are all interconnected. And all of this together, it will ensure that the self, I will feel healthy and the family, the home environment will be positive. When I'm talking about mental health, at the workplace, for example, what am I doing? How do I want to see myself after 10 years? Are my goals unrealistic? And my colleague is doing well, but am I at that level that I should have those goals? What these actions bring to me? So these are some of the questions that help us to realize how I am moving on with my life. So besides my own self, I would rather emphasize that the value system, how, what makes me comfortable, whether being competitive is what makes me happy, or whether accepting the life how it comes makes me help. At the workplace, what gives me satisfaction, and whether I'm connecting with others while I'm working, while I'm burdened with the work. So what is required is to identify a time when you can be with your own self, just 10 minutes. And that will help to maintain balance, to know yourself, because you are different. Each individual is different. Each individual's goals should be different. And we need to prioritize. We need to say no. We need to refuse. With my peers, if they are insisting that try this substance, so which is very common. Most important and last but not the least is that if we feel that things are not moving right, we need to seek a professional help, whether it is a health center, it's a district hospital, or it's a private setup. Thank you.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity by Dr. Rachna Bhargava, Professor Clinical Psychology, AIIMS Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: वित्तीय एवं न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसका सातवां भाग अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। एफएम बैंड पर 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: .com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और...
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए।

0: किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: नेताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका

0: के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग

0: नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बहार।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है रंगोली।

0: छाया गीत
1: लग जागने,
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में,
0: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
3: इश्क से कह दो किसने आए नहीं से सावन, प्यास भरी है सरे शाम से जलता है बदन।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है देवदास।
5: जिसे तू

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है मधुमती।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नख्मा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंतीमाला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंतीमाला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेट में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
2: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
2: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
2: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
2: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
2: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।

0: कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।
0: वो

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलक ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाहरी महारानी, बाह फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का।
1: फोकट का ना ही इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन।
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है पटेरे, एक छाती का एक समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लगी है देखा।
1: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे।
2: तो, तो, तो, तो, तो,

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंतीमाला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंतीमाला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंतीमाला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंतीमाला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, वक्त हो चला है विविध संगीत का। महबूब के लिखे गीत को आइए सुनते हैं। स्वर और संगीत के आवाज और संगीत निर्देशन में

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेश

0: आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली, तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया, तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में। ललित ने धुन बनाई थी, समीर ने गीत लिखा। कार्यक्रम में आप सुनिए जय वालिया के गाए इस गाने को। संगीत से सजाया है ललित ने, शब्द है जय वालिया के ही।

0: भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे गणेश हेगड़े और आशा भोसले की आवाजों में इस गाने को, जिसे लिखा था मनोज संतोषी, विक्की शर्मा ने, संगीत गणेश हेगड़े का ही था। इसके साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो दोस्त रघुवर की साव का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हम दोनों के इस गाने के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने, संगीत दिया है जयदेव ने, गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन, मुकाम फुलसर व्याया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, लिसनर्स नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुकमणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य कुमारी, सानवी और समस्त परिवार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरग, जयतेग बीरग, मीका बीरग, केवटापारा रायगढ़ से मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद, मीनू निषाद, शिवलाल जांगड़े, पुत्री भाई जांगड़े, हातिम जांगड़े, अवंतिका जांगड़े, उत्कर्ष जांगड़े, सुनीता जांगड़े, ग्राम तुलसीडीह बड़े मुड़पार जिला शक्ति से।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं काला बाजार फिल्म के गाने को मोहम्मद रफी गीता दत्त की आवाजों में। संगीत में प्रिया है सचिन देव बर्मन ने, गीत लिखा है शैलेंद्र ने। पसंद किया है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा छत्तीसगढ़ से ही, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शैना शर्मा, निवान शर्मा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति, छाया बंछोर, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

कार्यक्रम में आप सुनिए कामचोर फिल्म के इस नगमे को किशोर कुमार लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु, आशुतोष अंगारे, गौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा येशु, अंशु गुप्ता, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, डोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, धरसिवा से छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव।

रॉबर्ट सन दर्रा मुड़ा से लंबोदर प्रसाद, फैलेंद्र कुमार, तरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, हेमंत कुमार, राम ख्याल, तुलाराम, आरिमन आयन, रूप बसंत, मानस, देवा पटेल, सीताराम, निषाद, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजकांत सारथी बेमित्रा से, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, नौरंगपुर बिलाईगढ़ से मनशा राम मनहर, देविका मनहर, श्रीमती राजेश्वरी मनहर, सारंगढ़ से मन्नू देवांगन, जानवी देवांगन, रजनी देवांगन, रन्नू देवांगन, खर्री कसडोल से गायत्री निर्मलकर, अमित निर्मलकर, ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भोरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष, प्रकाश सेन, आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं विश्वास फिल्म के इस गाने को, जिसे गाया है मुकेश ने, शब्द रचना गुलशन बावरा के हैं, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे चिराग फिल्म के गाने को लता मंगेशकर साथियों की आवाजों में। मदन मोहन ने संगीत दिया था, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी। अब सुनिए लापरवाह फिल्म के गाने को किशोर कुमार चंद्रानी मुखर्जी की आवाजों में। बप्पी लहरी ने संगीत दिया है, रमेश पंत ने गीत लिखा है। चिराग फिल्म और लापरवाह फिल्म के गीतों को सुनना चाहते थे पटेल नगर मलोर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, पीपरपरा पालचुआ मुंगेरी छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, कैलाश यादव, सुरेश यादव, टिकेंद्र यादव, योगेश यादव, नर्मदा धाम सुरसुली बालौद से, इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज मुकेश और अंकित साहित्य।

श्रोताओं, किशोर कुमार चंद्रानी के गायश गाने के साथ ही अपने रेडियो दोस्त रघुवर के साथ को कार्यक्रम आपकी फरमाइश दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने वाले हैं, कुछ पलों में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच